मनमोहन सिंह और लता जी की आवाज में वारिस मूवी का ये गाना था, वर्मा मलिक के बोल और उत्तम जगदीश का संगीत था। वैसे एक आप एक बात बताइए, आपको सिर्फ अपने काम में बिजी रहना है या अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों से भरे दिनों की कुछ तैयारी भी करनी है? अरे भाई, मतलब इस महीने से आपको बताए, ऑफ कोर्स पता है कि सावन शुरू होने वाला है और अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन है, यानी अब धीरे धीरे उत्सव के दिन आने वाले हैं, तो उन दिनों के लिए आपको अलग से ना टाइम निकाल कर रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि ऐसे टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है तो बारिश होगी, यानी चाय पकौड़ी और छतरी का मौसम होगा। और अभी तो दिल्ली में इस टाइम में आप देखेंगे बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मतलब अगर आप बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑफकोर्स लगेगा, मैं तो खुद ही अभी स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी चाय पकौड़े छतरी का मौसम। तो इस मौसम में खूब घूमने फिरने का मजा लीजिए और दिल्ली में तो घूमने को इतना कुछ है कि आप बोर हो ही नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी में एक सीट खाली हो ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा।

मिठाई की दुकान पर घेवर आ गया है, तो सोचा मेरी तरह घेवर के जो लोग शौकीन है उन्हें बता दो कि भाई मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है। और वैसे हाँ, टाइम से याद आया कि भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है और अगले घंटे मुक्ता होंगी आपके साथ अर्पण शो में, और मैं पंकज आपसे जल्दी मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो अभी के लिए मुझे भोर सुहानी शो से दीजिए अनुमति। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही थोड़ी देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी मुक्ता। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान बाल कांड भाग 128। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगे। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आप मनभावन गीतों का आनंद लेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी मुक्ता। सुबह 9:10 पर नाज शेख आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक दिल लगी। रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे आज सुबह 10:30 नाज शेख के साथ। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप जान पाएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित डलहौजी के बारे में। नाज शेख इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 12:10 पर। इसमें आपके साथ होंगे श्रुति पुरी और रजनी मेहंदी रत्ता। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज आप सुनेंगे कलाकार आनंद बख्श, गीतकार आनंद बख्शी के बारे में। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी रजनी मेहंदी रत्ता।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। पर आप सुनेंगे रिक्वेस्ट बेस्ड शो मन भावन। इस कार्यक्रम में आपके लिए होंगी अपराजिता स्नातक। शाम 4:10 पर फिल्मी गीतों पर आधारित आप कार्यक्रम सुनेंगे। अपराजिता स्नातक इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे। शाम 5:10 पर गाते गुनगुनाते ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। इसमें आप 80s और 90s के एरा के गीतों का आनंद लेंगे। अपराजिता स्नातक इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे रिकॉर्डेड कार्यक्रम विश्लेषण। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले। इस कार्यक्रम में आप पुराने गीतों का आनंद ले सकेंगे। इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे सुनील दत्त। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक और 9:45 का समय रहेगा कार्यक्रम मंथन का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हर सिंगार और रात्रि 11:10 पर मार्केट मंत्र। कुसुम लता इसमें आपके साथ होंगी और कुसुम लता आपके लिए एक बार फिर से लेकर आएंगी 11:40 पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत। तो ये थे आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध

प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रीति को करे करे जगत व्यवहार, जाकी भक्ति हनुमान से सो उतरे भव पार। जी हाँ, ऐसे भक्ति मार्ग पर चलकर हम भी अर्पण कर पाए। ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। 6:11 और 55 सेकंड हुए हैं। सुप्रभात।

ब्रह्मा विष्णु महेश विख्याता, जिन ये सकल पसारा ताता। शिव संकादिक अंत न पाया, सोई आदि पुरुष घट भीतर आया। भगवान शिव तो प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद अनंत शक्ति का स्रोत हैं। आत्मा की इस असीम शक्ति को सदैव नमन करना चाहिए।

चेतना एक मानव की सहज अवस्था है, लेकिन हम इसे केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान हमारे शरीर से, हमारे विचारों से और हमारी भावनाओं से बना लेते हैं। जो चेतन है वो स्वयं को जानता है, उसे उसकी पहचान पता है। जो आत्मज्ञानी है वो परमात्मा के अलावा किसी और पर कभी भी निर्भर नहीं करता। हालात, परिवार, समाज कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर पाता। कोई घटना उस इंसान को नीचे नहीं जाने देती क्योंकि उसका विश्वास सुदृढ़ होता है। वो चेतन होता है, वो आत्मज्ञानी होता है।

0: चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जी हाँ, जिसकी चाहत चली जाती है, जिसके पास इच्छा नहीं रहती, उसकी चिंता अपने आप मिटती चली जाती है। और जब चिंता मिट जाती है तो ये मन भी बेपरवाह हो जाता है, परिस्थितियां इस मन पर हावी नहीं होती हैं। अर्पण का ये भाव जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ अर्पण को अभी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से विराम के साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और

दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

भक्ति जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, भक्तिमय जीवन होना चाहिए। मानव शरीर के साथ ही परमात्मा का आना हो जाता है हमारे साथ, और ऐसे में इसको पाने की लालसा तब बनती है जब हम इसे खो देते हैं, और खोते हम तभी हैं जब हम चेतन नहीं होते, जब हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। भक्त को तो अपना परमात्मा अपने भीतर दिखाई देता है। संत मीराबाई की भक्ति भी ऐसी ही थी, अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और मधुर भाव वाली। ईश्वर से मिलने की आत्मा की व्याकुलता को ही वो आत्मशुद्धि का मार्ग मानती थी। सत्य है, एक भक्त जब अपने परमपिता से गूढ़ प्रेम करता है तो उसे अपने हृदय के भीतर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है।

संतों का फरमान यही है, कर्म से मुंह को मोड़ो ना, मानव का हर धर्म निभाओ, फर्ज से नाता तोड़ो ना। छह बजकर 43 मिनट और ठीक 57 सेकंड हो चले हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हैं। अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। अर्पण के कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आइए अब आप और हम मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। पांच घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: एफआईआर प्राथमिकी इति पंजीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ एमवी गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मंत्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामा देशस्य विदेशमंत्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामा देशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वं अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मंचेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग

0: करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with a Macedonian counterpart, Gordana Siljanovsku Davkova. She will also meet the Prime Minister Hristijan Milskosti of Speaker of the Assembly Afrim Gashi and will also address Assembly of North Macedonia. The President will also address India-North Macedonia Business Forum. Both sides have keen interests in deepening economic ties in the priority sectors like agriculture, pharmaceuticals, science and technology, IT and ITES. President Murmu is also scheduled to visit the Church of Saint Spa and will also lay a wreath at the grave of eminent Macedonian revolutionary Gotse Delchev. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Achavasque in New Delhi. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora.
2: Panama serves as a natural bridge for us, for global trade routes, gateway for the wider Latin America region. And anchored by the Panama Canal, your logistics infrastructure certainly sets a global landmark. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. We note that you have had a consistently high growth trajectory, and as we ourselves accelerate our development towards the quest of Viksit Bharat or developed India by 2047.
1: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including 5 Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सात बजकर 21 मिनट और ठीक 35 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है

अच्छा वैसे कह तो हम भी आपको देते हैं, आपको पता है ना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे स्वभाव में कितनी जरूरी है, और स्वभाव से बहुत ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए है। जी हाँ, ये लचीलापन अगर आपकी बॉडी में है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और फ्लेक्सिबल बॉडी कैसे होगी? योग के साथ। जी हाँ, योग एकमात्र रास्ता है बहुत सारी बीमारियों के फायदेमंद परिवर्तन के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है औसतन इंसान के लिए, ताकि वो बीमार पड़े ही ना। बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तो फिर किसी तरह की परेशानी आने के लिए 10 बार सोचेगी। और आपको पता है, अगर आप सारा दिन काम करते हैं और आपका काम बैठने का है, तो आपके बॉडी पॉस्चर को ठीक करने में, उसे सुधारने में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें गुस्सा ना आए, हम चीजों को कंट्रोल कर पाए, हमारे निर्णय लेने की शक्ति और मजबूत हो जाए, इसमें भी योग बहुत मदद करता है। क्योंकि योग जो है वो सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर की जागरूकता को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को खोलता है, और सुबह का वक्त बेस्ट होता है इन चीजों के लिए। योग करिए, अपने मन को भी सुंदर कीजिए, अपने तन को भी सुंदर कीजिए, और कहने दीजिए सामने वाले को ये बात।

जी हाँ, खूबसूरत दिखते रहिए और अपने मन को भी खूबसूरत रखिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मुस्कान का भी कारण बनते रहिए। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। और अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात। समय आप जानते हैं ना, आप क्या है, समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: अपनी असफलता से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो किसी और के सुझावों से प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, वी वेलकम यू, एंड एज मुकेश सेड, इवन आई वॉन्ट टू एड समथिंग देयर। वेल मुकेश, टू बी ट्रूली सक्सेसफुल वी शुड वर्क विद टू थिंग्स, वन डिवोशन, second dedication,
0: good,
1: right? Two D's, and whatever may be your goals, you will definitely achieve them.
0: Bilkul.
1: And Bilkul, this is our hope and this is our aspiration for all of our listeners, that whatever you may wish, you receive it actually. So listeners, with that, let's start our news magazine program Aaj Savere. Well, we'll first give you the latest national and international news as always. Then we have Metro City updates, and we'll also explore today's history in great detail. And today there's also a special day which we'll tell you about, and it is 21st of July 2026 today.
0: Jee.
1: So without any further delay, let's get started with the program.
0: Bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक आज सवेरे संसद भवन में आयोजित की जाएगी। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं।
1: President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska-Dafkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Ristian Mikoski and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. President Murmu arrived in North Macedonia on a two-day state visit as part of a three-nation tour of Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the

0: three countries and its engagement with the wider Eastern European region.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वाक्सेज के साथ भेंट की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया।
0: National Security Advisor Ajit Doval has been selected for this year's prestigious Lokmanya Tilak National Award. The award will be presented on August 1st in Pune on the occasion of 106th death anniversary of Lokmanya Tilak. Union Home Minister Amit Shah, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Sunetra Pawar will attend the award ceremony. The award comprises a memento, a citation and a cash prize of 1 lakh rupees.
1: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। भोपाल के निकट जगदीशपुर में विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने राज्य के सभी जिलों और संभागों के साथ व्यापक परामर्श किया।
0: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. External Affairs Ministry said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including five Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided.
1: जम्मू कश्मीर में कल जम्मू क्षेत्र में वर्षा से संबंधित कई घटनाओं में एक महिला और दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले तीन दिन में वर्षा के कारण मृतकों की संख्या 23 हो गई है। लगातार भारी बारिश के कारण राजौरी और पुंछ के बाढ़ प्रभावित जिलों में 7 लोग लापता हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में वर्षा से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। एक अन्य घटना में डोडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रागी नाले के पास एक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई।
0: सो मुकेश, let me actually add more weather updates. The Indian Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today over parts of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad and places over Delhi, Haryana, Chandigarh. In fact, it's raining since last night in Delhi. Parts of northeast India, Bihar, East Madhya Pradesh, Konkan, Uttar Pradesh and Uttarakhand are expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. So Assam's flood situation, it has deteriorated further with the death toll rising to 10 amid incessant rainfall and swelling rivers across the state. And according to latest report, 16 districts have been affected, including Jorhat and Dibrugarh, Sivasagar as well. A total of 45 revenue circles and 794 villages remain inundated, affecting over 3 lakh people. Meanwhile, the monsoon activity, it continues across most parts of Himachal Pradesh with rainfall persisting in many areas. The Meteorological Centre Shimla has issued a red alert for heavy to extremely heavy rainfall in 5 districts of the state today.
2: Persistent monsoon rains have affected normal life in several parts of Himachal Pradesh. Many link roads remain blocked due to landslides, while power and drinking water supply have been disrupted in some areas. Restoration work is underway. The Meteorological Centre Shimla has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall today in Kangra, Mandi, Chamba, Sirmaur and Kullu district. As a precaution, all government and private educational institutions will remain closed for the second consecutive day today in Kangra, Mandi, Chamba and Sirmaur district. The administration has urged residents and tourists to avoid unnecessary travel and stay away from rivers, streams and landslide-prone areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Let's stretch our boundaries a little. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came yesterday after 3 American soldiers killed recently, 2 in Jordan, 1 in Iraq. Meanwhile, the U.S. forces today began a new

0: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले शगुन आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
1: सो मुकेश, द अपडेट दैट आई हैव इट इज अबाउट गेट 2027। This will be conducted as a computer-based test and will feature the Indian Institute of Technology Madras will actually conduct the Graduate Aptitude Test in Engineering or GATE from 6th to 21st February next year in the year 2027. So the GATE is India's premier national level examinations for higher education and recruitment in engineering and related disciplines. So the online application portal, this we have to take care of, the listeners. It is expected to open in the middle of August 2026. So keep an eye on it.
0: बिल्कुल। और मुंबई की खबरों पर नजर डालें तो मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती उपाय के रूप में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध खुफिया जानकारी के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इसमें इस अवधि के दौरान अशांति की संभावना जताई गई है। सोमवार को पड़ोसी जिले ठाणे के कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों पर बम से उड़ाने की धमकी के बाद दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद जीआरपी, रेलवे पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस अब सूचना के स्रोत और प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए फोन करने वाले का पता लगाने और उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar launched two citizen-centric initiatives, free doorstep delivery of caste certificates across the state, second one delegation of powers to Deputy Tehsildars to issue permanent residence certificates. Speaking after launching the initiatives in Bengaluru yesterday, the Chief Minister said the measures would simplify access to government services and reduce the need for people to visit government offices. He said 4.85 crore digital caste certificates they have already been prepared for doorstep distribution through district administration, while citizens can also download them free of cost online or obtain printed copies at government assistance centers.
0: और अब चलते हैं कोलकाता। कोलकाता में राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पंचायत विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नया निर्देश 1 अगस्त से लागू होगा और बढ़ी हुई राशि पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
1: Now we will focus our attention on Hyderabad. Telangana Governor Shri Shiv Pratap Shukla addressed students during the 86th Foundation Day celebrations of the Keshav Memorial Educational Society in Narayanaguda. He urged the youth to prioritize national progress and also emphasized that value-based education, discipline and a spirit of service from the bedrock of a developed India.
0: और रुख करते हैं दिल्ली का। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

0: दिल्ली यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए कल एक यातायात पाठशाला आयोजित की। ये कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान चौराहों और लाइट पॉइंट्स पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को यातायात सुरक्षा की जानकारी वाले इश्तहार बांटे गए और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है और दिल्ली सरकार इस महीने की 25 तारीख को सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीए मीटिंग आयोजित करेगी। इस बैठक में अभिभावक और शिक्षक मिलकर पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच, ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
1: Well, we would like to share one more update from Kolkata with our listeners. So the Election Commission is organizing an international conference in Kolkata today to discuss the process of making the postal ballot system more inclusive, secure and accessible. More from our correspondent.
2: The conference is being jointly organized by the India International Institute of Democracy and Election Management and International IDEA. Election officials from all 24 electoral districts of West Bengal will attend the event along with election administrators, policymakers, academics and election experts from India and several other countries. The discussions will focus on ways to make postal ballot and special voting arrangements more inclusive, accessible and secure. West Bengal Chief Electoral Officer Neelam Meena will inaugurate the conference. The program will feature thematic sessions on postal ballots, maintaining electoral integrity, preventing fraud, audit mechanisms, the legal framework, technology-enabled special voting systems, and the future of remote voting. During the international session, election experts from Nepal, Albania, Bosnia and Herzegovina, and other countries will share their experience virtually. Alongside India's experience, international best practices will also be discussed. Shondip Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा के साथ। तो आज सवेरे हम वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो शगुन, सबसे पहले दिल्ली का मौसम अपने श्रोताओं को बताएं।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं कि वर्षा जो है रात भर हुई है, आज भी पूरी तरह से वर्षा के उम्मीद है और रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण जो गर्मी थी, उमस भरी गर्मी, उससे लोगों को बिल्कुल निजात मिली है।
1: वी आर वेरी ग्रेटफुल
0: जी। और आज भी दिन भर रुक रुक कर वर्षा होगी और बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो आंशिक रूप से कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या गरज के साथ तूफान आने की आशंका है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेन और थंडर शावर्स एंड दे वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और एट नाइट। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विथ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म इवन एंड द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस इन हैदराबाद।
0: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 21 जुलाई है और आज ही के दिन 1969 में अमरीकी अंतरिक्षयात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे।
1: In 1960, politician Srimavo Bandaranaike became the world's first woman prime minister when she took office in Sri Lanka.
0: 2004 की बात करें तो आज एक दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने भारी बहुमत से पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीन क्षेत्रों में इसराइल को बाढ़ हटाने का प्रस्ताव पारित किया था।
1: In 2007, well, the seventh and final Harry Potter novel, Harry Potter and the Deathly Hallows, it was released with an initial print run of 12 million copies in the United States alone.
0: और 2007 में आज ही के दिन वॉशिंगटन में चार दिन तक चले विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था।
1: In 2008, Ram Baran Yadav was declared the first president of Nepal.

0: Also adding there on a kind of a funny note.
1: जी.
0: Today it's also National Junk Food Day. And the, so July 21 dedicates a giant menu of items to National Junk Food Day. And this day permits us to eat or to chow down on the foods we usually don't include in our daily diet. True?
1: बिल्कुल. जो और जो जंक फूड के जो नुकसान है,
0: we all know that.
1: हानि है, उसके बारे में भी कुछ बताएं.
0: Right. So junk foods, they by definition, they typically contain high fats, sugar, salt and calories and very little nutritional value. जी. And with the advent of packaged foods during the late 1800s, junk food made its way to into the American life and then permeating gradually and spreading across the whole globe. So however, home-cooked meals, they remain the standard for several more decades. So, but I think everyone can indulge in their favorite treats just for a day, kind of a cheat meal,
1: जी.
0: Right? So this day, it is a great guilt-free pass to enjoy delicious snacks, fast food and desserts without reservation. So embrace the joy of your preferred comfort food. You can also cook at home. It's all
1: जी,
0: right.
1: बिल्कुल.
0: Share your indulgences with your family and friends and savor every bite. That's what we wanted to tell you, listeners.
1: और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल सखाराम पागे को. वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं. विट्ठल सखाराम पागे का जन्म जुलाई 1910 में जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री मुंबई से ली थी. वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे. उन्होंने 11 जुलाई 1960 से 24 अप्रैल 1978 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था.
0: टुडे लिसनर्स, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के वी महादेवन, composer and a singer-songwriter and a musician, won the inaugural National Film Award for Best Music Direction for Kandar Karunai. And you know him for his works in Tamil, in Telugu, Malayalam and Kannada films as well. He is best known for his contributions in works such as Lavakusa and Balaraju as well. I was telling our listeners about K.V. Mahadevan.
1: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय रामदास दौलतराम को. आज उनकी पुण्यतिथि है. वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और स्वतंत्रता के बाद जय रामदास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे. वो असम के राज्यपाल भी रहे. 1979 में उनका निधन हुआ. उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1985 में डाक टिकट जारी किया था.
0: सो लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग अ म्यूजिशियन. Well, the singer of Khayal genre of Hindustani classical music from Karnataka. We know her for her deep and powerful voice, Gangubai Hangal. So she belonged to the Kirana Gharana, Mukesh.
1: Bilkul.
0: And I was telling you about her deep and powerful voice, which we can listen to in this particular song.

और गंगूबाई हंगल ने जाति बाधाओं को पार कर संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए हैं। इनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंचाक्षरी गवई, पंडित पुत्तूराज गवई, पंडित सवई गंधर्व तथा पंडित कुमार गंधर्व शामिल हैं।

0: Well, this is such a beautiful composition, Gangubai Hangal.
1: और भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की आज पुण्यतिथि है। अरब शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए, ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। तो उनका सजाया हुआ एक गाना सुनते हैं।
0: Sure.

वे इस मामले में लीक से हटे हुए संगीतकार रहे, जिन्होंने अपने समकालीनों की तरह दूरी बरतते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा। हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खान साहब का मार्ग रहा, सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ बम्बई आ गए। उनका पहला काम सुहराब मोदी के मिनरवा मूवी टोन में 30 महीने पर था। बाद में वो वाडिया मूवी टोन में चले गए, जो कि 60 रुपए महीने पर था। तो क्यों ना उनका एक और गाना सुना जाए।

0: Today, we're also telling you about Umashankar Joshi, prominent Gujarati poet, scholar, and literary critic who significantly influenced 20th century. His works, notable works, they include Gangotri and Nishith, and they showcase his deep engagement with human emotions.
1: और अब हम याद कर रहे हैं विल्लुपुरम चेन्नैया पिल्लई गणेशन को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें मुख्य रूप से शिवाजी गणेशन के नाम से जाना जाता है. तमिल सिनेमा की प्रमुख हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन संवाद अदायगी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुपरस्टार थे. शिवाजी गणेशन ने रंगमंच के साथ साथ फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया.
0: राइट मुकेश, सो शिवाजी गणेशन इज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम एंड अमंग द मोस्ट इमिटेटेड one by other actors. We'll now listen in to one of his very famous classics now.

और श्रोताओं, सिनेमा जगत के प्रख्यात गीतकार आनंद बख्शी की आज जयंती है। वो एक लोकप्रिय भारतीय कवि भी थे। वर्ष 1967 में प्रदर्शित सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन के गाने सावन का महीना पवन करे शोर, युग युग तक गीत मिलन के गाते रहेंगे, राम करे ऐसा हो जाए, कितने अच्छे गाने उन्होंने उन्होंने लिखे थे और इन गानों से उन्हें नई ऊंचाइयां मिली। चार दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से अधिक फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। तो क्यों ना मिलन फिल्म का ये गाना सुन लिया जाए।

0: Well, such a beautiful song. So Anand Bakshi, we are remembering the man who set a legacy. He was nominated for the Filmfare Award for Best Lyricist a total of 37 times.
1: जी.
0: The most number of nominations, and this resulted in 4 wins.
1: और अपने श्रोताओं को बता दें कि आनंद बख्शी के परिजनों ने उनका नाम आनंद प्रकाश रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद आनंद बख्शी के नाम से उन्हें पहचान मिली. और मूम की गुड़िया सन 1972 की फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया और गीत लिखे थे. और मोहन कुमार की फिल्म थी जिसमें मुख्य कलाकार थे रतन चोपड़ा और तनुजा. ये कम बजट की फिल्म थी जिसमें संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. और यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार आनंद बख्शी को गीत गाने का

0: तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए।
1: नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
4: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना

0: विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
2: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखाधड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर गति। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाउकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वज़ीर आज़म क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका यह दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़राअत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमत जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद उसत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब यह वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने यह बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाजों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाजों की आजादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट

0: डालना काबिले मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंभों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाज़ा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़रात, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अलाक्वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा, जिससे दो ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के अमल को मजीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग

0: से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
3: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिए अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय

दिल की बात दिल तक पहुंचने वाले गीतों के साथ। जी हाँ, ये है म्यूजिकल दिल्लगी मुक्ता के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्त, हार से डरना नहीं, क्योंकि असफलता तो केवल सीढ़ी है और यही सीढ़ी पहुंचाएगी आपको सफलता के शिखर तक। मंजिल तक पहुंचने के सफर को कुछ हद तक हम करेंगे कोशिश सुहाना करने की। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

कह देती हूं हर बात मुंह पर, मुझे बातें बनानी नहीं आती। मुख्तलिफ सी हूं जरा, हर बात रास नहीं आती। जो मेरा है नहीं छोड़ सकती हूं बस उसे, बाकी पराया जो भी हो उस पर नजर नहीं जाती। नादान हूं, ठोकरे खाती हूं बहुत, मगर गिरकर सीख लेने में मुझे तनिक भी लाज नहीं आती। नहीं मैं मुकम्मल हस्ती कोई, खामियों का एक पुलिंदा हूं। गिनाते होंगे और लोग खूबियां अपनी, मैं अपनी खामियां गिनाने में नहीं शर्माती।

दिल की बातें सुनते रहिए, अपने आप कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूजिकल दिल लगी फिलहाल यहीं तक। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए और उसके बाद नास के साथ इस सफर को आगे बढ़ाइए। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय पार्टी की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में होगी। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक आमतौर पर संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूरी एकजुटता को दिखाना है। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री मोदी को सम्मानित करते हुए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत कल हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा सर्व्स एज अ नेचुरल ब्रिज फॉर अस।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: टेक्नोलॉजी एंड ऑफकोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिकम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ होंगी ढेर सारी बातें, एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग और कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो बने रहिए साथ और एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त ट्रैक।

कहते हैं लोग मोहब्बत में हदें पार कर देते हैं। क्या आपने भी कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ तो ये अगली कुछ लाइनें आपके लिए हैं। कि जिस्म से होके पार आए हम, कि जिस्म से होके पार आए हम, रूह अपनी उसकी नजर पर हार आए हम। उनसे मिलने की बेकरारी थी और मिलके भी बेकरार ही आए हम। आखिरी बार मिलके आए तो उसके दिल से ही उतर आए हम। उसे एक भरोसा दिलाने के खातिर हर शर्म सारी हया निसार आए हम। और अब के फिर लौटकर कहां जाएं हम, उसके लिए अपने ही घर से होके फरार आए हम।

अरे उसकी ना किस्मत बहुत अच्छी है। कितनी बार ये बात आपने कही है या फिर किसी को कहते सुना है किसी के बारे में? तो अब जरा ये सुनिए। होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं। होते हैं कुछ लोग जो अपने सपनों को वक्त रहते पहचान लेते हैं। होते हैं कुछ लोग जिनके सपनों में उनकी खुद की नजरों में आने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। होते हैं कुछ लोग जिन्हें दुनिया से लड़ने से पहले खुद से नहीं लड़ना पड़ता। होते हैं कुछ लोग जो हर किसी को अपने सपनों का हिसाब नहीं देते और जो सपनों को मुकम्मल शक्ल देते हैं ना, वो कभी कुछ कहकर जवाब नहीं देते। होते हैं कुछ लोग जो किसी से बिना डरे करते रहते हैं अपने हिस्से की मेहनत और इस कायनात की नजरों में आते रहते हैं, और फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे लोगों को खुशकिस्मत बता देते हैं। पर वाकई होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो कर

लेट्स फॉरगेट सारी परेशानियां और सारी टेंशन एंड फोकस ओनली ऑन दैट थिंग्स जो आपको मोटिवेट रखती हैं। पहले तो अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए और उसके बाद जो ठान लिया है उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बशर्ते जो तय किया है आपने उससे आपका फायदा हो या ना हो, किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब आज के इस ज्ञान के बाद आज का मौसम क्या कह रहा है, चलिए ये भी जान लेते हैं।

दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से है सक्रिय और गरज और चमक के साथ बारिश का माहौल बना हुआ है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 28 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। सुबह से ही बारिश हो रही है, धीमी धीमी हो रही है। मौसम बहुत सुहाना है जिसे आपको एंजॉय करना है, लेकिन

आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर खास तौर पर ध्यान रखिए ताकि डेंगू के मच्छर आपके आसपास पनप ना पाए। मच्छरदानी का हो सके तो इस्तेमाल करें सोते समय, और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। पानी की सफाई का ध्यान रखें, साफ उबला हुआ या फिर फिल्टर पानी ही इस्तेमाल में लाएं। बाहर के खाने से परहेज करें, फ्रेश घर का ताजा खाना ही खाएं। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखना है, और साथ में एंजॉय करना है ये अगला गाना भी और ये खूबसूरत मौसम भी।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूं।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

म्यूजिकल दिल्ली चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज, जहां बातों के सिलसिले को अब बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि किन वजहों से खास है आज की ये तारीख यानी 21 जुलाई। भारत समेत पूरी दुनिया के लिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि साल था वो 1883 जब कोलकाता में देश के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल की शुरुआत हुई थी और जिसका नाम था स्टार थिएटर। फिर साल 1988 में आज ही के दिन भारत के संचार उपग्रह इनसेट 1C को फ्रेंच

साल 2007 में आज ही का दिन था जब द फेमस नॉवल हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पब्लिश किया गया था और जिसने तब बिक्री के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। मशहूर ब्रिटिश राइटर जे.के. रोलिंग की वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज की ये सातवीं और आखिरी बुक थी जिसे 21 जुलाई यानी आज ही के दिन साल 2007 में लगभग 93 देशों में एक साथ रिलीज किया गया था। पूरी सीरीज का क्लाइमेक्स इस बुक में था तो जाहिर है कि क्रेज इस बुक को लेकर पहले से ही बहुत था। आंकड़े बताते हैं कि रिलीज के पहले 24 घंटों के अंदर ही इस बुक की 11 मिलियन यानी लगभग 1,10,00,000 कॉपीज बिक गई थी। साल 2011 में इसी बुक पर बेस्ड हैरी पॉटर मूवी की आखिरी, माफ कीजिए, इस मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट रिलीज हुआ था और इस पार्ट ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में ये शामिल हो गई जिसमें जादुई दुनिया की सैर कराते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी की बेमिसाल दोस्ती हमने देखी। तो चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं हमारी दोस्ती और सुनते हैं वो ट्रैक जिसे फ्रेंडशिप एंथम अगर मैं कहूँ तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा।

फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं

जिंदगी के सफर में किस तरह गुजर जाता है वक्त जो कभी लौट कर नहीं आता, ये शायद उस कलम से बेहतर और कोई समझा ही नहीं सकता था जो आनंद बख्शी साहब के हाथों में थी, है ना। शब्दों के जादूगर थे वो, जिन्होंने भले ही कभी कोई गजल नहीं लिखी, ऑफिशियली कभी कोई शायरी या फिर कोई किताब भी नहीं लिखी, लेकिन उनका लिखा हर गीत और उसका हर अंतरा गालिब और मीर के शेरों जैसा ही वजन रखता है। आज यानी 21 जुलाई को ही साल 1930 में बख्शी साहब का जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के सबसे महान, सफल और मशहूर गीतकार के रूप में बख्शी साहब ने अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए उन्होंने 4 दशकों से भी लंबे अपने करियर में लगभग 550 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए हजारों गाने लिखे, और कुछ ऐसे लिखे जो कभी मिट नहीं सके और ना ही कभी मिट पाएंगे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और गाना जो सिखाता है कि बस चलना और चलते रहना ही तो जिंदगी है।

मशहूर भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का भी आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन साल 1947 में उनका जन्म हुआ था। इनके साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर गुजराती साहित्यकार उमा शंकर जोशी का भी आज जन्म दिवस है। और भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ रहे विट्ठल सखाराम पांगे और जय रामदास दौलतराम का भी जन्म आज ही के दिन यानी 21 जुलाई को हुआ था। और इन सब खासियतों के साथ ही आज से शुरुआत हो रही है खर्ची पूजा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यानी स्नान यात्रा की।

पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक पर्व है खर्ची पूजा, जिसका उत्सव 7 दिनों तक चलता है और जो मुख्य रूप से पृथ्वी यानी धरती माता के शुद्धिकरण और मानव जाति के पापों को धोने के लिए मनाया जाता है।

और अब म्यूजिकल दिल्लगी के आज के सफर को थामने से पहले बात भारत सरकार की उस क्रांतिकारी योजना की भी, जिसका मकसद है देश के बुनियादी ढांचे का विकास करना, साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। 13 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई ये योजना कोई एकल योजना नहीं है, बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम लगातार कर रही है। सड़कों, ट्रेनों और उड़ानों के बेहतर नेटवर्क से लेकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने तक पीएम गति शक्ति योजना काम कर रही है। मैं यानी नाज अब ले रही हूं आपसे कुछ देर की इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अब ठीक 10:30 बजे। दिल का मेलबॉक्स रहेगा प्रोग्राम, और अभी एक और खूबसूरत ट्रैक के साथ छोड़कर जा रही हूं आपको, जिसके उस पार जरूर सुनिएगा देश और दुनिया का हाल हिंदी समाचारों और इंग्लिश न्यूज के जरिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की, जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में

0: आमटी जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. Referring to the ongoing monsoon session of Parliament, the Prime Minister said the NDA will play a constructive and positive role in ensuring the passage of bills. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. over the opposition uproar on various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the House took up motions for election to different committees of the Parliament amid opposition uproar. Presiding Officer Sandhya Ray urged the members to return to their seats and allow the House to function smoothly. Despite her appeal, the opposition members came to the well with placards and carried on sloganeering over NEET and student protests, It led to adjournment of the Lok Sabha till 2 p.m. When the Rajya Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan appealed to opposition members to go to their seats and allow the House to function, but the opposition did not pay heed to his advice. Amid uproar, the Rajya Sabha was

0: also adjourned till 2 p.m. India today summoned the Russian chargé d'affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of 4 Indian lives. Conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack, the Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and Ranges. Earlier in May this year, the Supreme Court had constituted a high-powered committee to examine matters related to the Aravali Hills and Ranges, besides ancillary issues. The committee will submit its comprehensive report to the Apex Court before the 31st of next month. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses, supported by documentary evidence or other verifiable material, through email at mshpcaravali@gmail.com within 3 weeks. In Sikkim, search and rescue operations are underway to safely evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Senior Superintendent of Police of Namchi district said 9 bodies have been recovered by the rescue team so far. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole today. The Prime Minister expressed grief at the loss of lives. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund that would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. U.S. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came after 3 American soldiers were killed recently, 2 in Jordan and 1 in Iraq. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in afternoon trade today. The Sensex shed 217 points to at 77,491, while Nifty dropped 60 points to 24,179 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही फिल्म। एक ही फिल्म कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन कुछ पुरानी फिल्मों की मीठी सुहानी यादों से, या कहें कि वो फिल्में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए जो एक वक्त हमारे दिल में, हमारे दिल के किसी कोने में अपनी एक बहुत ही ख़ास जगह रखती थी। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं उस दौर की वो फिल्म, जिस दौर में काले और सफ़ेद रंगों के बीच जज्बात ढलते हुए इतने रंगीन हुआ करते थे कि दिल अपने आप थम सा जाता था। और उसी साल एक ऐसी फिल्म आई, वो दौर था सन 1960 का, जिसके गानों ने हर गली, हर मोहल्ले, हर रेडियो पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1960 में आई एक क्लासिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म, दिल अपना और प्रीत पर आई। तो आज के हमारे इस सफ़र में जो हमारी बातों का जो सिलसिला है वो चलेगा फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई को लेकर, जो कि बनी है हिमालया फिल्म्स के बैनर के तरह, और इसको निर्देशित किया किशोर साहू ने। तो दोस्तों, बातें करेंगे, बातों का सिलसिला चलेगा इसी फिल्म को लेकर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में लता जी की आवाज़ में यह खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ दिल अपना और प्रीत पर आई हिमालय फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म किशोर साहू के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक लव ट्रायंगल थी, लेकिन इसे बनाया बहुत ही संजीदगी के साथ था। यानी कि लव ट्रायंगल था लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही संजीदा फिल्म। एक तरफ इस फिल्म में थे दयालु और अपने फर्ज के पक्के डॉक्टर सुशील, यानी कि हमारे डैशिंग राजकुमार साहब, और दूसरी तरफ थी एक सीधी साधी सी नर्स करुणा, जिसकी आंखों में भी करुणा थी, दर्द और मोहब्बत झलकता था, यानी कि हमारी खूबसूरत और टैलेंटेड मीना कुमारी जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सुशील की शादी उनका परिवार एक अमीर और घमंडी लड़की रीता यानी कि नादिरा से करा देता है। अब एक तरफ दिल का रिश्ता और दूसरी तरफ फर्ज और समाज की बंदिशें। अब कहते हैं ना, जब दिल किसी और का हो और प्रीत किसी पराए से निभानी पड़े तो जिंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, कश्मकश में फंस जाती है। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और सदाबहार गीत, जो आज भी जब बजता है ना तो हर किसी के दिल के तार बज उठते हैं। तो लीजिए सुनते हैं लता जी की मखमली सी आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

जीवन की संध्या में आनंद बख्शी को कई बीमारियों ने घेर लिया। 30 मार्च 2002 को 71 वर्ष की उम्र में आनंद बख्शी ने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद भी ऐसी कई फिल्में आईं जिनमें आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे। 2008 में आई महबूबा शायद वो आखिरी फिल्म थी जिसके सभी गीत आनंद बख्शी के थे। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग से।

आनंद बख्शी ने जी सिने अवार्ड्स और स्क्रीन अवार्ड्स के साथ साथ चार बार फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीता। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली उनकी फिल्में थी अपनापन, तेरे मेरे बीच में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ताल। वैसे तो ज्यादातर बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनका साथ सबसे ज्यादा लंबा और गहरा रहा। एक बार एक इंटरव्यू में संगीतकार लक्ष्मीकांत ने कहा था कि दूसरे गीतकार जहां एक गीत लिखने में 7-8 दिन लगाते हैं, वहीं आनंद बख्शी 8 मिनट में गीत लिख देते हैं। तो आनंद बख्शी का लिखा हुआ आज का आखिरी गीत दो रास्ते फिल्म से, और इसी के साथ मैं रजनी आपसे इजाजत चाहूंगी कलाकार बेमिसाल से, और इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे उर्दू में खबरें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इंदाद का यकीन दिलाया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी LC को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान NDA की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तिहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतालिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलव्वस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुल्ज़िमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तिजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तिजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: NDA के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तिहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इदा किया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: BJP के राज्यसभा के MP अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मर्तबा NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रेजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फा-ए-सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामची जिले में ज़ेर तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत-ए-हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वज़ीर आला प्रेम सिंह तमंग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमंग ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मरकजी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमंग ने कहा कि NDRF, SDRF, SSDMA, जिला इंतजामिया, मकामी पुलिस, रंगपो PHC की तिब्बी टीमें और मकामी बिरादरी मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की गरज से करीबी इश्तराक के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मुनदम होने के सबब जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। महलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने सिक्किम के नामची जिले में जेरे तामीर टनल में अफसोसनाक वाकये में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने मैलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने मैलुकीन के रिश्तेदारों के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत की दुआ की, साथ ही फंसे हुए लोगों को बहिफाजत बचाया।

0: Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravalli@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10, 21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in any NET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र

0: वाहन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है

0: कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msshpcarawali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 आहेत। प्रसारित करत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात मकबूल हुसैन यांचं गायन राग मुलतानी। विलंबित बंदेश झुमरा तालामध्ये निबद्ध आहे तर द्रुत बंदेश हे 3 तालामध्ये निबद्ध आहे। विलंबित बंदिशीचे बोल आहेत गोकुल गावका तर द्रुतबंदिशीचे बोल आहेत कंगन मुंडराई मोरीरे। त्यांना तबला साथ केली आहे शंतनू किंजवडेकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ आहे जयंत फडके यांची। तर ऐकूया मकबूल हुसेन यांच्या गायनात राग मुलतानी।

0: FM Gold, खरा सोना।
1: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM Gold, खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR आ मोबाइल एप पर खास सोना जेवो खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज आपनी साथे छे हूँ तरुलता करोड़िया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोड़िया ना सस्नेह नमस्कार। मित्रों शब्द जेनी मूड़ी छे गाम माथी निकड़ो त्यारे आ शब्द लईने निकड़ो अने आ शब्द क्या क्या लई गयो स्वातंत्र्यनी छावणी में जेल में विश्वविद्यालय में संसद में देशना मूर्धन्य साहित्य मंडळो में विदेशना संस्कृत समाज में एटले के विशाळ काव्यलोक में रवींद्रनाथनी विश्व भारती में अने हा ज्यारे मानव तरीके आश्चर्य लोक में गयो त्यारे आ शब्दनो ऋण शो शब्द ने हूँ विसर्यो खरो ना प्रामाणिकता थी एटलू तो कही शकूँ कि शब्दनो विसारो मैं वेठ्यो नथी। मित्रों आ छे उमा शंकर जोशी जेमनी आजे जन्मतिथि। आकाशवाणी गीत गुर्जरी परिवार एमने श्रद्धा सुमन अर्पण करे छे। गांधी युगना स्वातंत्र युगना ए समयना आ सारस्वत साहित्यकार जेमने 1968 में सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ थी नवाजवामां आव्या हता। बामणा गाममां एमनो जन्म अने घरनी पाछळ ज डूंगर नानकड़ो डूंगर परंतु हा प्रकृतिनी गोदमां अने त्यारथी ज लगभग एमने प्रकृति साथे प्रेम थई गयो अने प्रवास साथे प्रेम थई गयो। मैट्रिक पछी ज्यारे शाळा छोड़वानो समय आव्यो ने त्यारे शाळाना मैदानमां ऊभा रहीने कह्युं हूँ मारी शाळानुं नाम रोशन करीश। हे शाळा जोजे हाँ तारू नाम हूँ रोशन करीश। आ ए समय हतो ज्यारे मुंबई तथा गुजरातनुं एटले के महाराष्ट्र अने गुजरातनुं विभाजन थयुं नहोतुं। એ દાયકો હતો અને હા સ્વતંત્રતાની હવા ત્યારે ચાલતી હતી। રાષ્ટ્રપ્રેમ મનમાં જાગ્યો હતો એવો આ સમય અને એ સમયમાં જન્મેલા અને કાર્ય કરેલા ઉમાશંકર જોશી।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। 1920 गुजरात युनिवर्सिटी नी स्थापना थई अने पाछळथी उमाशंकर जोशी गुजरात विद्यापीठना कुलपति थया। गांधीजी अने रवींद्रनाथ टागोरनो एमना पर खूब प्रभाव हतो। मित्रों ए समय एवो हतो ज्यारे लोको पोतानो नहीं परंतु राष्ट्रनो विचार करता। उमाशंकर जोशीए पोताना एक निबंध जेनो टाइटल हतो ज्यारे हूँ तरुण हतो एमां लख्यु छे के ते समयना युवानो केवी रीते राष्ट्र प्रेम अने भारत भाग्य विधातामां मानता हता। गांधीजीनी एकमात्र हाकलथी तेमणे उच्च शिक्षण छोड़ी दीधुं अने आझादीना आंदोलनमां जोड़ाई गया। तेओ जेलमां पण गया। विरम गामनी सत्याग्रह छावणीमां तेमणे एक सैनिकनी भूमिका भजवी। ज्यारे युवान हता त्यारे 15 रुपया उधार लईने आबू रोड गया। आबू पर्वत जयरे चढ़ी रहा था त्यारे रवींद्रनाथ टागोर नी एक काव्य पंक्ति संभळाई अने एमना प्रेम में पड़ा अने कविता ना प्रेम में पड़ा।

हे हुतु तु अविनाश व्यासनी रचना कई रीते बनी? स्टूडियो में गौरांग व्यास बैठा था अने मन्नाडे आव्या अने मन्नाडे कयो, अरे कुछ रमतियाड़ गीत थई जाए तो? अने बस गौरांग व्यासे जईने कही दीधुं अविनाश व्यास ने, भाई हाँ गौरांग व्यास एमना दीकरा अने एमने भाई कहता, भाई मन्नाडे कयुं छे कोई रमतियाड़ गीत बनावा माटे। बस अविनाश व्यास बेसी गया, लगभग 8-1 अंतरा जेवा बनावी नाख्या आ गीतना, अने पछी कह्युं तमने जे जोईए ए राखी लो। आवा हता अविनाश व्यास।

खूब भालो खूब भालो, अविनाश व्यास खूब भालो। आवो फोन अचूक सचिन देव बर्मन रेडियो पर करता। अविनाश व्यास क्रिकेट ना खूब शौकीन हता, क्रिकेट एमनो पहलो प्रेम। एले गौरांग व्यास, अविनाश व्यास अने पुरुषोत्तम उपाध्याय आ त्रणे जणा एटले के गायक कलाकार गीतकार संगीतकार आ लोको क्रिकेट रमता। हवे एमनी पासे त्यारे स्टम्प नोता, एटले भीत उपर कोलसाथी स्टम्प चितरता। अविनाश व्यास ने बॉलिंग करवी खूब गमती अने खोटे खोटू गौरांग व्यास अने पुरुषोत्तम उपाध्याय ने आउट आउट आउट करीने आउट करी देता। अने आवी रीते तेओ चीटिंग करता क्रिकेट रमती वक्ते, अने खूब धमाल मस्ती करता पुरुषोत्तम उपाध्याय गौरांग व्यास अने अविनाश व्यास। मात्र 6 वर्षनी उम्रे एमनो दीकरो गौरांग व्यास, जे एमने भई कहीने बोलावता, तेओ तबला वगाडवा लाग्या, हार्मोनियम पर पण एमनी आंगळीओ फरवा लागी। त्यारे ज एमने खबर पड़ी गई कि तेओ भविष्यना एक सारा संगीतकार बनशे।

मित्रों वात चली रही छे अविनाश व्यासनी। तो पुरुषोत्तम उपाध्याय पोतानी एक मुलाकात में एवं कहूं हतु के रेडियो पर जयरे अविनाश व्यासनु रूपक आवतु त्यारे सचिन देव बर्मन एने अवश्य सांभळता अने रूपक पूरु थाय एटले सचिन देव बर्मन रेडियोना ड्यूटी रूम में फोन करीने कहता

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हमले के कारण बार बार बाधित हुई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने नीट यूजीसी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि यह मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
2: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्ता पनबिजली परियोजना की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इत्यादि पर चर्चा की। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के बारे में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल इट आउट, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: the Central Institute of Classical Tamil, CICT, Chennai. An autonomous institute under the Ministry of Education, Government of India, has issued recruitment notification inviting applications from eligible Indian nationals for the post of an associate professor on regular basis. A total of 6 vacancies available in the academic level 13A as per the 7th CPC. Applications must fulfill the prescribed educational qualifications, experience, age and other eligibility conditions under the UGC regulations. Detailed information, eligibility criteria and the prescribed application format is available on the Institute's official website. Completed applications along with prescribed application fee and supporting documents should reach the Registrar, Central Institute of Classical Tamil, Chemmuri Salai, Perumbakkam, Chennai 600100 within 60 days from the date of publication of this advertisement. For details, kindly look up the website at www.cict.in. I repeat the website, it is www.cict.in. Cochin Port Authority Kerala has invited applications for the post of a Deputy Chief Vigilance Officer on deputation basis. One vacancy is available in the IDA pay scale of 60,000 to 1,80,000 rupees equivalent to level 10 as per the 7th CPC. Eligible officers from major port authorities, central and state governments, public sector undertakings and autonomous bodies may apply in accordance with the prescribed recruitment rules. Candidates can find the detailed notification, eligibility criteria and application procedure on the official website of Cochin Port Authority. Kindly refer to the website, that is at www.cochinport.gov.in. I repeat, it is www.cochinport.gov.in.
3: The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, LBSNAA, Mussoorie, under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, has invited applications from eligible candidates for recruitment to various posts on deputation basis. The vacancies include Administrative Officer, Data Entry Operator, Grade C and Grade B, Physical Training Instructor, Radiographer, Offset Machine Man, Staff Car Driver Grade 1 and Halwai Cum Cook with pay levels ranging from Level 3 to Level 7 as per the 7th CPC. Applications must be submitted through proper channel along with the prescribed biodata, RPARS, Vigilance Clearance, Integrity Certificate and other required documents within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed vacancy-wise eligibility conditions, application format and other instructions are available on the official website. Do refer to www.lbsnaa.gov.in. I repeat, it is www.lbsnaa.gov.in.
2: The Noida Special Economic Zone, NSEZ, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited applications from willing and eligible candidates for appointment to several posts on deputation basis in the Office of Development Commissioner, Noida Special Economic Zone. The vacancies include Junior Hindi Translator, Assistant Development Commissioner, Section Officer Accounts, Stenographer Grade 3 and Preventive Officer with pay levels ranging from Level 4 to Level 7 as per the 7th CPC. The posts are located in Noida and Moradabad in Uttar Pradesh. The last date for receipt of applications has been extended by 45 days from the date of publication of the extension notice in Employment News, while all other eligibility conditions remain unchanged. Detailed information regarding eligibility, application procedures and recruitment rules
3: is available on the official NSEZ website. Do refer to www.nsez.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक परिचालन अधिकारी, डिस्पैच अधिकारी और स्टोर कीपर। वेतनमान, आयु सीमा, योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट igrua.gov.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in। इसके अतिरिक्त भर्ती पोर्टल पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसका पता है www.recruitmentsvpuat.in। इसी संस्थान के विस्तार निदेशालय में निदेशक विस्तार और संयुक्त निदेशक का भी एक एक पद रिक्त है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता निर्देश और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट www.svpuat.edu.in। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 3 अगस्त 2026। भारत सरकार का उपक्रम FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है। उपलब्ध पद हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ, मध्य स्तरीय विशेषज्ञ और विशेषज्ञ। ये सभी विशेषज्ञ भू वैज्ञानिक अथवा भू भौतिकी विद अथवा रसायन वर्ग के विशेषज्ञ होने चाहिए, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ संपर्क वर्ग के होने चाहिए। वरिष्ठ विशेषज्ञ मध्य स्तरीय और केवल विशेषज्ञ के 10-10 पद रिक्त हैं, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ का एक पद रिक्त है। विस्तृत विज्ञापन और अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.fagmil.nic.in। मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, आवेदन प्रारूप, भर्ती के नियम और शर्तों तथा आवेदन शुल्क आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए IHBAS की वेबसाइट www.ihbas.delhi.gov.in। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2026। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक मुंबई में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.nabfid.org। इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच भी बाहर रह जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का ये विचार हमें सिखाता है कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछना, नई बातें स्वीकार करना और अपनी भूलों से सीखना आवश्यक है। श्रोताओं, यही दृष्टिकोण हमें जीवन में अधिक समझदार और संवेदनशील बनाता है। इसी सोच के साथ आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। अगले आधे घंटे में हम लेकर आएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, क्षेत्रीय गतिविधियों और खेल जगत की अहम हलचलें। वहीं डेडलाइन में होगी एक ऐसी रोचक और विशेष विषय पर चर्चा जो आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही याद करेंगे उन महान विभूतियों को जिनका आज की तारीख से एक खास संबंध रहा है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी।

0: हैं जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी.
1: एब्सोल्युटली. इफ यू थॉट इंडिया वाज ओनली मेकिंग हेडलाइंस इन स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, हियर इज अनदर रीजन टू सेलिब्रेट. आवर यंग साइंस चैंपियंस हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंस कॉम्पिटिशंस.
0: चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से. उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वीं इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. और अनुजा, पता है इसमें सबसे खास बात यह है कि हमारी टीम के चारों छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है.
1: एंड वैष्णवी, दीज स्टूडेंट्स वर फेलिसिटेटेड यस्टरडे एट मुंबई'स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, व्हिच इज इंडियाज नोडल सेंटर फॉर ओलंपियाड प्रोग्राम्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स, वेयर दे एंड देयर मेंटर्स शेयर देयर जर्नी थ्रू द कॉम्पिटिशन एंड देयर एक्सपीरियंसेस. लेट अस गो टू आवर मुंबई कॉरेस्पॉन्डेंट टू नो मोर ऑन दिस.
2: The Indian team comprising Devdutt Priyadarshi from Odisha, Harshit Singla from Punjab, Kabir Chiller from Delhi and Sandeep Kuchi from Telangana not only won 4 gold medals but also placed India at the top of the medal tally alongside China, Vietnam and individual participants group B from Russia. To tell us more about how the competition progressed and how the Indian team rose to the top, we have with us Professor Shubhajit Bandopadhyay from ICER Kolkata, who was the head mentor of the team.
3: I am really happy for our country, for our students. And about the exam, it consisted of two parts. One was laboratory practicals and the other one was theoretical. So unlike the conventional exams that you see, it's not something directly from the book. It would involve doing new things. The kind of questions that are asked are new. And, you know, people think chemistry is memorization. It's not. It's purely logic. The questions were very interdisciplinary. So it involves biology. It involves a lot of mathematical calculations and physical, organic, inorganic, biological chemistry, everything together.
2: The 58th International Chemistry Olympiad witnessed the participation of 363 students from 93 countries, making it the biggest edition of the competition to date. Registering its best ever performance this year, India has showcased its undeniable chemistry with the field of science, setting a benchmark for future teams to come. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
0: अब बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की. लिथुआनिया में आयोजित 37वीं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं. सच में अनुजा, ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण रहा होगा उसमें.
1: एब्सोल्युटली वैष्णवी. द मेडल विनर्स वर भाव्या गुणवाल हु वन द गोल्ड मेडल, वाइल सोमिल मेथी, निशित कलानी एंड अनमोल कुमार बैग्ड सिल्वर मेडल्स. अ प्राउड मोमेंट इंडीड फॉर ऑल ऑफ अस. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज नॉट बिहाइंड इन कंग्रेचुलेटिंग द टीम ऑन देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस.
0: और श्रोताओं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. भारत की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स टीम ने भी कमाल कर दिया. जी हाँ, कोलंबिया के बुकरामांगा में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के सभी पांचों प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीते. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा.
1: एंड दैट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग. 3 मेजर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स एंड इंडिया हैज डिलीवर्ड वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर.

0: अनुजा, आपने गौर किया होगा ओलंपियाड शब्द सुनते ही कई छात्र सोचते हैं कि ये सिर्फ बेहद होशियार या जीनियस छात्रों के लिए होता है।
1: दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ओलंपियाड्स आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स हु एंजॉय एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द स्कूल सिलेबस एंड लव सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स।
0: बिल्कुल, ओलंपियाड में हिस्सा लेने से सिर्फ पदक जीतने का मौका नहीं मिलता बल्कि नई तरह से सोचना, मुश्किल सवालों का हल ढूंढना और अपने विषय को गहराई से समझना भी सीखने को मिलता है और यही बातें आगे पढ़ाई और करियर दोनों में बहुत काम आती है।
1: एंड वैष्णवी, लेट्स नॉट फॉरगेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर। स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दे एक्सचेंज आइडियाज, एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज।
0: शायद आप ये जानते हो या नहीं, लेकिन ओलंपियाड में मिली उपलब्धियां आगे चलकर बहुत काम आती हैं। ये आपके कॉलेज एप्लीकेशन को मजबूत बनाती है, स्कॉलरशिप और रिसर्च के नए मौके खोलती है और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी

0: देती है.
1: And now many listeners might be wondering, how can I participate in these Olympiads?
2: अनुजा, इसकी शुरुआत यहीं भारत से होती है. सबसे पहले छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस जैसे विषयों के इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर यानी IOQ में भाग लेना होता है.
1: And students who qualify move through several stages, including orientation camps and rigorous training conducted by experts. The very best are then selected to represent India at the International Olympiads.
2: भारत में ओलंपियाड का पूरा सफर चयन से लेकर ट्रेनिंग तक होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HBCSE के जरिए होता है.
1: एंड द की इज सिंपल, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टे क्यूरियस, प्रैक्टिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस रेगुलरली एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क व्हाई एंड हाउ.
2: बिल्कुल, याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है. आज जो छात्र दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वे भी कभी आपकी ही तरह स्कूल में पढ़ते थे और बड़े सपने देखते थे.
1: वेरी मच वैष्णवी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द यंग साइंटिस्ट्स हु हैव मेड इंडिया प्राउड. देयर सक्सेस रिमाइंड्स अस दैट टैलेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ट्रूली नो No boundaries.
2: और अंत में हम हमारे सभी छात्र श्रोताओं से यही बस कहना चाहेंगे कि सपने बड़े देखिए, जिज्ञासु बने रहिए और सीखना कभी मत छोड़िए. आखिर कौन जानता है, भारत के लिए अगला ओलंपियाड मेडल आपका ही हो, इसलिए हमेशा सीखते रहिए. और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है.
1: एंड ऑफ कोर्स इन दिस सेगमेंट फर्स्ट वी टेक यू to Leh, where the first pilot geothermal power project of India is being developed at Puga Valley of Changthang district of Ladakh. Two wells of the geothermal project were commissioned by Lieutenant Governor of Ladakh, V.K. Saxena, on 17th of July. And with the commission of these two wells, which are significant, the 1 megawatt pilot geothermal power project is ready to harness power. Our Leh correspondent has filed this report on this.
3: Oil and Natural Gas Corporation is working at Puga Valley of Ladakh to develop India's first demonstration scale of the geothermal power project. The successful commissioning of the 1,000 meters deep well, which had drilled at 14,000 feet, has paved the way in achieving in harnessing of clean energy mission and vision of Ladakh as carbon neutrality in the country. Successful drill of these two wells are considered as unique due to the most challenging terrain in the world. Managing Director of ONGC, Ashish Agarwal, explained more about Puga Geothermal Power Project.
4: एक सिर्फ geothermal well नहीं हुआ है, ये देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, ये एक nation building का काम हुआ है. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि इंडिया में geothermal energy को harness किया जाए. आने वाले दिनों में ये जो potential अब establish होगी, अब हम pilot phase करेंगे और उसके बाद इसका commercialization phase में जाएंगे, ना सिर्फ power generation के लिए बट लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये बहुत काम में आएगा.
3: Execution of this project had to face several challenges like accessibility and expiration of 5 years of MOU in February 2026. Yangchan Dorma for Parikrama from Leh Ladakh.
2: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब तकनीक के नए दौर में कदम रख रही है. यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अब AI आधारित पैदल नेविगेशन और क्राउड इंटेलिजेंस ऐप की मदद से मंदिर और अन्य गंतव्यों तक आसानी से पहुँचने का मार्गदर्शन मिलेगा. अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
5: वाराणसी नगर निगम और वाराणसी स्मार्ट सिटी ने निजी कंपनी के सहयोग से सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काशी में क्राउड मैनेजमेंट और पर्यटकों को गाइड करने की पहल की है. इसके जरिए काशी में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे 4 घंटे पहले ही अनुमानित भीड़ का पता चल जाएगा और पुलिस समय रहते ही इस भीड़ से बचने के उपाय और डायवर्जन कर सकेगी. शुरुआत में शहर में 8 AI सेंसर लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में करीब 50 से अधिक हो जाएंगे. इससे भीड़ और ट्रैफिक बिहेवियर का अध्ययन करके पता चल जाएगा कि किस जगह पर आने वाले समय में कितनी भीड़ होगी और मौजूदा समय में कहां पर भीड़ और यातायात का दबाव है. ये जानकारी काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिलती रहेगी, जिससे प्रशासनिक और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. वहीं सड़कों पर विभिन्न गंतव्य तक जाने के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पीले रंग की लाइन पर चलकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और नीले रंग की लाइन पर चलकर कोई भी श्रद्धालु गंगा के घाट पर पहुंच सकता है. इसके साथ ही AI आधारित ऐप और म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से भी आने जाने के रास्तों को

0: The Chardham Yatra is being conducted in coordination with the district administration, police, SDRF and other concerned departments. Pilgrimage routes are under constant surveillance with heightened vigilance being maintained in vulnerable areas. Garhwal Commissioner Anand Swarup has appealed to the pilgrims that if a route is temporarily blocked due to heavy rainfall, landslides or any reason, they should stay only at the safe locations or holding areas designated by the administration and to follow the instructions issued by the administration and police. The commissioner has also urged pilgrims to check the latest weather updates before commencing their journey and to rely only on official information issued by the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: और श्रोताओं, चारधाम की यात्रा से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पवित्र शहर तारकेश्वर में सालाना श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
2: Every year in the rainy month of Shravan, that is in July and August, lakhs of people walk the path of devotion to Tarakeshwar Temple in Hooghly district of West Bengal. They carry holy water from the Ganges, collected mainly at the Nimai Tirtho Ghat in Boidobati, along with various other ghats, to offer to Lord Shiva at the Taruknath Temple. Known as the Shravani Mela, this event draws countless devotees each year. Pilgrims, referred to as Jaljatris, walk around 40 kilometers barefoot. They come from places all across the country. Echoes of chants, prayers and heartfelt devotion fill the town. Tarakeshwar Shravani Mela is more than a walk. It is a journey of love, belief and hope. This year, the opening day was marked by a spectacular aerial tribute, rose petals showered from a helicopter onto the temple and thousands of devotees below. Across Bengal, districts like Purva Bardhaman, Bankura and Kolkata are hosting vibrant local celebrations with community-run food stalls, fairs and temple gatherings. Even in far-off Kuchbihar and Jalpaiguri, devotees observe the month with local meal and Kanwar procession. Gajan celebration is performed by the devotees, signifying marriages of the male forces of Siva, Neel or Dharmaraj with their respective consorts. Sandipan Dasgupta, Akashvani, Kolkata.
3: Vaishnavi, let's take you to Goa now, where the Goa government has stepped up its efforts to strengthen the dairy sector by enhancing incentives, expanding financial support and recognizing the contribution of dairy farmers there. Let's find out more details from our correspondent.
4: Across Goa, dairy farming is a vital source of livelihood for thousands of families. Nearly 4,500 dairy farmers supply around 125,000 liters of milk every day, helping meet the state's growing demand. To support them, the government has enhanced milk procurement incentives to 6 rupees per liter for cow's milk and 10 rupees per liter for buffalo's milk. Under the expanded Mukhya Mantri Sudharit Kamdhenu Yojana, financial assistance is now available for dairy units with up to 20 cows. The government also honored outstanding dairy farmers with Gopal Ratna Award, inspiring more youth to take up dairy farming. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: भारत भूटान चीन ट्री जंक्शन से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि भी जारी कर दी गई है। मॉनसून समाप्त होते ही रेल मंत्रालय और पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कार्य शुरू करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को और मजबूत व अभेद बनाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब भारत भूटान चीन सीमा के त्रिजंक्शन जल ढाका को रेल लिंक से जोड़ा जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 272 करोड़ रुपए की राशि विगत दिनों आवंटित की है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के समतल पहाड़ के कालिम्पोंग जिले के वन क्षेत्रों से होते हुए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इस रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वे का काम बरसात समाप्त होते ही शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के भारत भूटान चीन से लगे सीमा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना के लिए सैन्य परिचालन को भी बल मिलेगा तथा कालिम्पोंग व जलपाई गुड़ी जिलों के पहाड़ी व तराई क्षेत्रों में जल ढाका बिंदु व तोदे तांगदे इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह रेल लाइन जलपाईगुड़ी के चालसा से खुनिया मोड़ से शुरू

0: तथा जल ढाका तक विकसित किया जाएगा। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: And now something from the field of sports. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And if we talk about the business news, benchmark domestic equity indices ended in negative zone today. The Sensex declined 238 points or 0.3% to close at 77,470. The Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid Cap 100 Index rose 0.3% and Small Cap 100 Index added over 0.5%.
2: आइए अब रुक करते हैं 21 जुलाई से जुड़े उन महान लोगों की ओर जिन्होंने अपने विचारों, प्रतिभा और कर्मों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ी।
1: एंड वी स्टार्ट विद पेइंग ट्रिब्यूट टू उमेश चंद्र बनर्जी, मीनिंग He was an honoring, a pioneering Indian barrister, a brilliant legal mind and a foundational architect of India's freedom struggle. He is best remembered as the co-founder and the first president of the Indian National Congress. It is his death anniversary today. His leadership united early political voices in the pursuit of democratic representation and national freedom. Long before the mass movements of the 20th century, Banerjee staunchly opposed the exploitative salt tax and strongly advocated for the Swadeshi movement.
2: जब किसी कलाकार की आवाज समय की सीमाओं को पार कर पीढ़ियों तक गूंजती रहे तो वह कलाकार सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि एक परंपरा बन जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ऐसी ही महान विभूति थी गंगूबाई हंगल। किराना घराना की प्रमुख गायिका गंगूबाई हंगल ने ख्याल गायन को नई ऊंचाइयां दी। उनकी गंभीर और प्रभावशाली आवाज उनकी सबसे बड़ी आवाज बनी थी। आइए आपको सुनाते हैं गंगूबाई की कुछ खूबसूरत नगमें, लेकिन उससे पहले अगर अनुजा कुछ बताना चाहेंगे अब हमारे पास और कौन से आगे बढ़े।
1: नहीं बिल्कुल, वी हैव अ सॉन्ग इन हर वॉइस, लेट्स।

0: Heartfelt tributes on the birth anniversary of Vitthal Sakharam Phage, a distinguished freedom fighter and visionary leader, on his death anniversary, whose unwavering commitment to democracy and public service strengthened Maharashtra's legislative traditions. His legacy of integrity, leadership and dedication to the nation continues to inspire generations. May his ideals of service, patriotism and democratic values continue to guide us towards a stronger and more united India.
1: कुछ अभिनेता किरदार निभाते हैं और कुछ अपने अभिनय से उन किरदारों को अमर कर देते हैं। शिवाजी गणेशन ऐसे ही महान कलाकार थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। लगभग 5 दशकों के अपने शानदार फिल्मी सफर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वीर पांड्या, कट्टा बोमन, पासाम लार और देव मगन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी मिसाल माना जाता है। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की आवाज में ये दमदार संवाद।
2: என்னை குற்றவாளி என்கிறார்களே, இந்த குற்றவாளியின் வாழ்க்கை பாதையிலே கொஞ்ச தூரம் பின்னோக்கி நடந்து பார்த்தால் அவன் கடந்து வந்துள்ள காட்டார்கள் எவ்வளவு என்று கணக்கு பார்க்க முடியும். பாட்டொலிக்கும் குயில்கள் இல்லை என் பாதையில், படமெடுக்கும் பாம்புகள் நெளிந்திருக்கின்றன.
0: This was a dialogue from his Tamil movie Parashakti. He was introduced to cinema in the year 1952 through this movie, which became a blockbuster later.
1: कुछ कलाकार लोकप्रियता से नहीं बल्कि अपनी कला की ऊंचाइयों से पहचाने जाते हैं। सज्जाद हुसैन ऐसे ही असाधारण संगीतकार थे जिनकी धुनों की जटिलता, मौलिकता और शास्त्रीय गहराई से उन्हें इस हिंदी फिल्म संगीत का एक अलग ही अध्याय बना दिया। सज्जाद हुसैन की रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: Yes, Sajjad went on to work with many notable singers including Suraiya, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, and he was regarded highly by his contemporaries including Anil Biswas at that time. One of the best scores that Sajjad Hussain created was in the film Rustam Sohrab, in which Suraiya sang this beautiful song.

और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, लेकर सवाल जवाब का पिटारा, यानी कि सवाल मेरे पास है और जवाब आप मुझे देंगे, तो मिलकर ये बन गया पिटारा। फिलहाल सुनते हैं हिम्मत वाला से ये बहुत ही मजेदार गाना, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको हमारे पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखकर भेजने हैं। वैसे अगर आप हमारे पुराने लिसनर हैं तो आप जानते हैं कि ईमेल के जरिए आप हमें फिल्म के नाम लिखकर भेजेंगे, जिनसे जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी आज यहाँ पर। बहुत मजेदार होने वाला है ये सफर, तो रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूँ यार.
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा.
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप. डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.

आज आपको गेस करनी है यश चोपड़ा की एक रोमांटिक फिल्म जो 80s के एंड में आई। जी हाँ, यश चोपड़ा के लिए 80 का दशक कुछ खास नहीं रहा। जब उनकी एक्शन फिल्म्स ने जो है फ्लॉप होती चली गई, तो उन्होंने फिर से एक बार रोमांटिक फिल्मों की ओर रुख कर लिया। जैसा कि हम सब उन्हें जानते भी हैं, जैसे ही यश चोपड़ा का नाम आता है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सिलसिला, लम्हे, दिल तो पागल है या मोहब्बतें याद ना आए। वैसे जिस फिल्म का जिक्र आज मैं कर रही हूं, उसकी म्यूजिक एल्बम यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका म्यूजिक, उसका संगीत इतना पसंद किया गया कि इस फिल्म के गाने आज भी सुपरहिट हैं। इस फिल्म में 9 गाने हैं और 2 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स भी हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। ये आप तब जान जाएंगे जब आप फिल्म का नाम पहचान लेंगे। तो अगर आप पहुंच चुके हैं फिल्म के नाम तक, तो आपको लिख भेजना है अपना जवाब fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, यहां सब्जेक्ट कॉलम में आप फिल्म का नाम लिखकर इसे जल्दी से सेंड कर दें। तब तक हम सुन रहे हैं शक्ति फिल्म से ये गाना।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न

0: तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

बिल्कुल, आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं और ये सफर भी गाते गुनगुनाते चल रहा है, पता चलता है आपकी ईमेल से। और पहला सही जवाब जो हम तक पहुंचता है उसे लिखकर भेजा है नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर नई दिल्ली से। दूसरा सही जवाब आता है नागेंद्र ठक्कर का। और तीसरा जवाब देने वाले हैं अजिंक्य, गिरीश बम, वैशाली बम, जीत और रिया। तो आप सभी हैं बहुत बहुत बधाई के हकदार। और पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आप सबका नाम आता है, इसके बाद भी सही जवाब आए हैं। इदरीस सैफी ने दिया हमें सही जवाब। और सही जवाब देने वाले हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, प्रफुल्ल मोहद, प्रफुल्ल जो हैं अमरावती से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। मिलिंद खड़के भी हैं हमारे साथ सही जवाब देने वाले, ललित कुमार ने लिखा सही उत्तर। और संतोष सक्सेना बताते हैं, जगदीश बजाज, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से सही जवाब देते हैं, प्रणव शिंदे, राजेश मानक लाल शाह, सुदर्शन, अनीता सिमरन मुखी और मधु किरण, प्रकाश गोगिया, प्रवीण कुमार दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। डीबी राणा है नेहरू विहार से, मोहम्मद सईद अबासी, निकत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, आपने भी बिल्कुल सही सही बताया। अजीत भावसर, आपने भी दिया सही जवाब। वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप में से जिन लोगों ने सही जवाब नहीं दिए, किसी ने लिखा मोहब्बतें, किसी ने सिलसिला, दिल तो पागल है, अरे ये नाम तो मैंने लिए भी थे, जिस फिल्म की मैं बात कर रही थी वो नाम मैंने शामिल नहीं किया था। तो आप लोग हिंट्स थोड़ा और ध्यान से सुने, मैंने कहा यश चोपड़ा इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो अब जिनके नाम मैंने ले दिए उनके बारे में तो मैं जिक्र नहीं करूंगी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके लिए रेडी है और उस सवाल के बाद चांदनी का गाना भी आप तक पहुंचेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चांदनी जो फिल्म है ये 1989 में रिलीज हुई और इसमें एक्टिंग की श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और वहीदा रहमान ने। अगला सवाल आप सबके लिए है 80s की ही एक क्राइम थ्रिलर फिल्म से जिसे डायरेक्ट किया महेश भट्ट साहब ने। फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक भी फिल्म में लाजवाब रहा। यह कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम है रवि और विकी। रवि और विकी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रवि हमेशा विकी की मदद करने के लिए आगे आता रहता है और विकी नई नई मुसीबतों से दो चार होता रहता है। खूबसूरत गानों से सजी इस फिल्म का नाम अगर आप पहचान चुके हैं तो इसे जल्दी से लिख भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले दूसरे तीसरे नंबर में आए तो आपको थोड़ी और जल्दी स्पीड पकड़नी होगी, और अगर सब्जेक्ट कॉलम में आप फिल्म का नाम लिखकर सेंड कर देंगे तो सबसे पहले आपका नाम पहुंच सकता है, अगर टाइम रहते आप सेंड करते हैं तो। तब तक मैं आपको सुनवाती हूं चांदनी फिल्म से ये बहुत ही प्यारा गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का गाते गुनगुनाते में। और आपके जवाब जो हैं वो हमें मिल गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 90 से ऊपर परसेंट जो हैं वो सही जवाब आए हैं, मतलब 90% से ज़्यादा सही जवाब आप लोगों ने लिखकर भेजे हैं। तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ नामों के साथ, फिर बताएंगे आपको कि क्या है फिल्म का नाम। वैसे मैं पहले ही बता देती हूँ फिल्म का नाम है नाम जी, नाम है वो फिल्म जिसकी मैंने बात की। तो पहला सही जवाब आया है नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर से, दूसरा जवाब देने वाले पंकज कुमार और तीसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर। आप सभी को बधाई। इसके बाद प्रणव शिंदे, इदरिस सैफी, भगवती सिंह, प्रफुल मोहद, प्रफुल ललित कुमार, अजीत भावसर विरमगाम गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ सही जवाब देते हैं, और संतोष सक्सेना, सतप्रकाश सनौठिया रोहिणी से बताते हैं सही जवाब, जगदीश बजाज विकासपुरी से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान, अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से, सुदर्शन सिमरन, अनीता मुखी सोनीपत से, गिरीश वैशाली, अजिंक्य अजीत और रिया वडोदरा से सही जवाब बताते हैं, जितेंद्र चौरसिया हैं सही जवाब देने वाले, भगवती सिंह ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मधु किरण, प्रकाश गोगिया, प्रवीण कुमार हैं दिल्ली से, और वीरेंद्र शर्मा का भी हमें ईमेल आई है लेकिन आपने फिल्म का नाम नहीं लिखा, मुझे लगता है आप भूल गए हैं, आपने सिर्फ मुंबई लिखकर भेज दिया है। और इसके बाद सही जवाब देते हैं जयंती नाशिकार, आप हमें जवाब लिखकर भेजते हैं, और राजकोट से जैमिन कुमार जैन, आप सभी ने बिल्कुल सही सही बताया कि फिल्म है नाम जिसका मैंने यहां जिक्र किया, संजय दत्त, नूतन कुमार, गौरव, अमृता सिंह, परेश रावल, पूनम ढिल्लो, इन सब ने इस फिल्म में जो है काम किया, और दो भाइयों की जो भूमिका है वो निभाई किसने, कुमार गौरव और संजय दत्त ने, कुमार गौरव बने रवि कपूर और संजय दत्त बने विक्की कपूर, और पूनम ढिल्लो ने सीमा राय का किरदार निभाया, और फिल्म में नूतन बनी रवि और विक्की की माँ। तो ये तो हुई नाम फिल्म की बात, इससे बहुत ही एक खूबसूरत गाना मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जरूर पूछूंगी आपसे। अगला जो आपके लिए मैं पहेली, आप कह सकते हैं रिडल लेकर आई हूं, वो एक मल्टी स्टारर फिल्म से है जो 80s की शुरुआत में रिलीज हुई। राज एन सिप्पी ने फिल्म डायरेक्ट की और फिल्म को प्रोड्यूस किया रोमू एन सिप्पी ने। ये कहानी है भाइयों की जो एक फार्म हाउस पर रहते हैं, जिन्हें सुधारने के लिए आती है इंदु जो बड़े भाई की पत्नी है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और हंसी खुशी से चल रही भाइयों की जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जब फिल्म की स्टोरी घूमती हुई नजर आती है। अगर आपने पहचान लिया है फिल्म का नाम तो इसे जल्दी से टाइप करके भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तब तक आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों

0: अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए.
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें.
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें. ये क्विक रिफंड में सहायक होती है. सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड.
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता. आयकर विभाग, भारत सरकार.
3: आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने.

बिल्कुल, और जानते हैं कि किसने सही जवाब लिखकर भेजा है। पहला सही जवाब देने वालों में नाम शामिल मैं कर लेती हूं जी। तो पहला सही जवाब आया है हमारे पास नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर से। एक बार फिर अमित नरूला है दूसरे नंबर पर और नागेंद्र ठक्कर है तीसरे नंबर पर। तो जो देखने में आ रहा है वो नवीन भाटिया और नागेंद्र ठक्कर जो है पहले दूसरे तीसरे में रहते हैं, बस ऊपर नीचे कभी कभी नाम हो जाता है। ललित कुमार भी सही बताते हैं। इदरीस सैफी का भी जवाब नहीं, इदरीस सैफी का जवाब सही नहीं है। अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से सही सही बताते हैं। जुगेश रावत हैं, प्रणव शिंदे, गिरीश बम, वैशाली अजंक्य बम भी हैं इनके साथ, और रिया जीत भी हैं वडोदरा से आपके साथ। राजेश मानकलाल शाह ने बिल्कुल सही बताया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अबान बताते हैं सही सही। कौशल नोएडा से सही आंसर लिखकर भेजते हैं। प्रफुल्ल का भी जवाब सही है। जगदीश बजाज विकासपुरी से सही उत्तर लिखकर भेजते हैं। और राजेश मानकलाल शाह ने शायद दोबारा मैसेज भेज दिया। आराधना शर्मा, राज शर्मा बिल्कुल सही बताते हैं। अजीत भावसर विरमगाम गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ देते हैं सही जवाब। डीबी राणा नेहरू विहार से, देवेंद्र लोडिया, संतोष सक्सेना आपका जवाब सही नहीं है। ऋत्विक हैं, जयंती नाशिकार हैं, वीरेंद्र शर्मा और प्रभात ए एच देवाली, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी, आप सबने बिल्कुल सही सही बताया। और आपको इसी फिल्म से यानी कि सत्ते पे सत्ता, ये है फिल्म का नाम जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और थोड़ा और हिंट मैं देती तो शायद सब पहचान जाते। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब लिखकर भेजा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेंटल, कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू ने इस फिल्म में एक्टिंग की। बहुत ही मजेदार ये फिल्म रही और मजेदार एक से बढ़कर एक इस फिल्म के गाने रहे। तो एक गाना जो मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और सबका फेवरेट भी है, वो मैं आपको सुनवा रही हूं।

आप लोगों के साथ ये सफर हमेशा बहुत खास होता है। छोड़े जा रही हूं आपको एक और बहुत ही सुंदर गीत के साथ, जो है अर्थ फिल्म से। फिर किसी रोज आपसे यहीं मिलना होगा, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति

0: राजनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Raj Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue. Amid the continued uproar, the chairs adjourned both Lok Sabha and the Raj Sabha for the day. Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister

0: खर्चात अंदाजे 2,00,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
4: की उत्पादकता बढ़ाना है, कपास के किसानों का कल्याण करना है, कपास के उत्पादन की लागत घटाना है, कपास में लाल सुंडी जैसे लगने वाले रोगों का मुकाबला कैसे करें इस पर विचार करना है, कपास के उन्नत बीज कैसे बने, रेनफेड एरिया में कपास की खेती कैसे बेहतर हो, कपास के बीज सुलभता से कैसे किसानों को मिले और कपास में अटैक करने वाले वायरस का मुकाबला हम कैसे कर पाए, और काटन पैदा करने वाले किसान बहनों और भाइयों, हम काटन की खेती को उन्नत बनाएंगे, आपके लिए फायदे का धंधा बनाएंगे.
5: आप जानते हैं कि भारत के लिए कपास इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
6: भारत और कपास का रिश्ता हजारों वर्षों पुराना है. एक समय ऐसा था जब भारतीय सूती वस्त्र दुनिया के कई देशों में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे. 19वीं शताब्दी में कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की स्थापना के साथ आधुनिक सूती उद्योग ने नई गति पकड़ी. अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा. बाद में स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय कपड़ा उद्योग को और मजबूत किया और देश में स्वदेशी मिलों की स्थापना को बढ़ावा मिला. आज कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है. ये लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका का आधार है. इसके अलावा कपास की प्रोसेसिंग, व्यापार और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से 40 से 50 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है. कपास, सूत, कपड़ा और तैयार परिधानों का निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है. इसमें एशियाई कपास, मिस्र की कपास और अमरीकी अपलैंड कपास शामिल है. वर्ष 2002 में व्यावसायिक रूप से शुरू की गई बीटी कपास में बॉल वर्म नामक प्रमुख कीट के प्रकोप को काफी हद तक कम किया गया. इससे कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई और किसानों की आय में भी सुधार हुआ. भारत में कपास की पहचान उसके रेशों यानी स्टेपल की लंबाई के आधार पर भी की जाती है. देश छोटे स्टेपल से लेकर अतिरिक्त लंबे स्टेपल तक सभी श्रेणियों की कपास का उत्पादन करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र किए जाते हैं. अगर खेती की बात करें तो देश में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होता है. उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और दक्षिणी क्षेत्र में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. इसके अलावा ओडिशा और तमिलनाडु में भी कपास की खेती की जाती है. भारत में 114.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 38% है. हालांकि देश में लगभग 62% खेती वर्षा आधारित है, जबकि 38% खेती सिंचित क्षेत्रों में की जाती है. यही व्यापक खेती, जैव विविधता और मजबूत वस्त्र उद्योग भारत को वैश्विक कपास अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
5: कपास की खेती जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पादन बढ़े और भारतीय कपास की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर और मजबूत.
7: सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए.
8: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
7: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें.
8: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें. ये क्विक रिफंड में सहायक होती है. सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड.
7: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता. आयकर विभाग, भारत सरकार.
9: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: या खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए.
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें.
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें. ये क्विक रिफंड में सहायक होती है. सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड.
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता. आयकर विभाग, भारत सरकार.
3: 30 जून 2026 तक 3,29,550 गांठों का प्रमाणन किया जा चुका है, जिनमें 3,22,400 गांठें कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हैं. इस कार्यक्रम में QR कोड आधारित प्रमाणीकरण और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी.
4: स्पष्ट है कि कपास केवल एक कृषि फसल नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और निर्यात का महत्वपूर्ण आधार है. भारत की कपास की कहानी निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है. एक ओर ये लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वस्त्र उद्योग और उससे जुड़े करोड़ों लोगों के रोजगार का भी आधार है. यदि आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार और मूल्य वर्धन पर इसी तरह ध्यान दिया जाता रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक कपास अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है. इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही. इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने. तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने. नमस्कार.

0: अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्कोपिये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता, अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटन रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्त व्यापार सन्धिषु भारतीय कृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद भवनस्य प्रावृत सत्रस्य कार्याचरणमध्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरंतर कोलाहलेन आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य संचालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षी सदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगं अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न द्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माण

0: अधीने सुरंगे अवरुद्धान जनान सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धार दलेन संप्रति यावद् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलन कारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। संप्रति नामची मंडल प्रशासनम एनएचपीसी अधिकारीभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षी बलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरंतरं आपतुद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ़ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढ़ अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनांके एमवी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मंत्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखंड राज्य अश्रांतं जलवृष्टेः तथा यात्रा मार्गेषु संभाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधाम यात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मंडल प्रशासन आरक्षीय बलेन तथा अन्याधिकारी वर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारु रूपेण संचाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्य क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार. धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर

सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद, प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी।

0: The West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up, and that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp, and the overall sentiment in terms of both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable sentiment which is there in the market, but the market is yet to try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter, that's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
1: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग लगभग बराबर से ही रहे, और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोज। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
0: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ही हम मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएल

0: जीएसटी स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
1: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं 2-pronged स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक 2-pronged स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नज़र जरूर है और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएं, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3-6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
0: एक चीज और संक्षेप में यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं, और अब वो कहां मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
1: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा, और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा।
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मजबूती का रुख रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
2: मेजर यूएस इंडिसेज एंडेड लोअर यस्टरडे। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्लिप्ड 0.6%, S&P 500 डिप्ड 0.2% एंड द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स क्लोज्ड मार्जिनली डाउन। मीनवाइल इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर मूव्स टुवर्ड डीएस्केलेशन इन द वेस्ट एशिया conflict and are awaiting earnings reports from major companies due later in the week. Vishal, we'd like to have your expert comment on this in the backdrop of elevated crude oil prices and resumption of West Asia crisis.
1: Well, you know, if you look at the overall situation, these two are very, very crucial impact factors. Now, we've seen the impact in the past, I would say, more than 4 months. And this has also shown to the world that, you know, any crisis in the energy sector is bound to have ripple effects across various sectors as well. As far as the West Asia crisis is concerned, you know, this is the immediate flare-up. And this has a lot of impact because those are oil-producing, you know, baskets of the world where this conflict is happening. But if we go

0: you know, it is going to be really important for all players, including the ones which are at conflict right now, to try and figure a way out, because the longer this continues, much harder will it be for certain economies, not everyone, but for certain economies to tide over in situations and come back to the normal terms.
1: Vishal, agar pure taur pe dekhen Asia aur America aur apne gharelu bazaar ko share bazaar ki agar hum baat kare, hamare bazaar mein kahin na kahin mote taur pe chahe ankon ke taur pe aankdon ke taur pe giravat nazar aayi Asiai bazaron mein, lekin wahi वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है. अमरीकी बाजार में भी हल्का सा दबाव नजर आता है. दो चीजें स्वाभाविक मन में जो आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया पे जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
0: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा. अगर आपको दो चार पाँच दिन या हफ्ता एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है. एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे. ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना और ख़ासतौर पर ऐसी स्थिति पर पहुँच जाना जहाँ पर कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर सप्लाई चेन की भी बात है. इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर दिख रहा है, तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा. हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है.
2: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
0: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some negative impact on the markets, specifically in US, in Canada and in European markets as well. But it doesn't it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
1: नवर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है. स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग

0: पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो।
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.9% की बढ़त से 1,42,608 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 2.1% की मजबूती से 2,23,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहाँ देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आम तौर पे ऐसे देखा था, डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है, पहले तेल फिर सोना।
2: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं। तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है।
1: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा,
2: ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए। और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना। लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर।
1: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में है, ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
2: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी हैं और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा।
1: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुडबाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने की सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू

0: की है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी। महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Rajya Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue. Amid the continued uproar, the chairs adjourned both Lok Sabha and the Rajya Sabha for the day. Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, at the Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijijo said during the meeting, Prime Minister Modi stressed that those responsible should face the strictest possible punishment.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: The Madhya Pradesh Assembly passed the Uniform Civil Code Bill on the second day of its monsoon session today amid protests by the opposition. The bill will now be sent to the governor for assent. Once approved, the Uniform Civil Code will come into force in the state. Tribal communities have been kept outside the scope of this. India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors, including information technology, agriculture, food processing, pharmaceuticals, textiles, biotechnology, tourism, hospitality and filmmaking. The decisions were taken following talks between President Draupadi Murmu and her North Macedonian counterpart in Skopje. Addressing the media after talks, President Murmu said both countries have reaffirmed their deep and friendly ties based on shared democratic values and mutual respect. She expressed confidence that her landmark visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, will further strengthen the multifaceted partnership between the two countries. The National Hydroelectric Power Corporation Limited has said that a detailed investigation will be undertaken to ascertain the cause of the tunnel collapse at the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district in Sikkim yesterday. The NHPC informed that 11 casualties have been reported so far and several others are trapped inside the tunnel. The rescue operation is underway. Prime Minister Narendra Modi spoke to Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance. President and Vice President have expressed grief over the loss of lives in Sikkim. The Joint Awami Action Committee JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. The JAAC said that an individual has succumbed to his injuries after being shot in the head by forces. Meanwhile, JAAC has urged people of the POJK to participate in the protests on 23rd of July with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. Seven Indian players have progressed to the next round at World Squash Junior Championships in Niagara-on-the-Lake, Canada. India kick-started the campaign in the championship strongly with women's top seed Anahat Singh advancing to the next round after a straight game victory against Australia's Lily Wilson today. India's Sanvi Kalanki booked her place into the next round after enduring a five-game battle against the Netherlands seed Ekle Mua. Meanwhile, Anika Dubey registered a straight game victory over Anna Kuwahara of Japan and Rudra Singh received a walkover. And that is the end of this news bulletin.
4: Surkhiyon mein.
0: Ye Akashvani hai. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
5: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप के तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मोल्डोवा की यात्रा के बाद आज श्रीमती मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंची। दोनों ही देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये अब तक की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके बाद वे रोमानिया जाएंगी, जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा होगी। इन यूरोपीय देशों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों और समूचे यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
6: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
5: एम्बेसडर सज्जनहार, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जो तीन राष्ट्रों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया गई और उन्होंने आज मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोव्स्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी एड्रेस की, वहां के जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। सो आप हमें बताएं कि इस पूरी विजिट को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व क्या है?
6: मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों देश आजाद हुए थे जब सोवियत संघ का विघटन

0: हुआ 1991 में, उसके बाद इनको स्वतंत्रता मिली और तब से भारत हमेशा इनके प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए इनके साथ काम करता रहा है। परंतु कोई ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा दोनों तरफ से कहीं नहीं हुई है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रोमानिया तो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, 2007 से वो सदस्यता उसको मिली हुई है। और ये जो दोनों देश है, मोल्दोवा है और नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये दोनों जिनको कहा जाता है कैंडिडेट कंट्री, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो एक बड़ा गुट है उसमें 27 देश शामिल हैं और बहुत तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं। और उसमें कैंडिडेट कंट्रीज ये है मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया, मतलब इनकी बातचीत शुरू हो गई है और ये कुछ सालों में ये सदस्यता भी उनको प्राप्त हो जाएगी। और ये सभी को ज्ञात है जो इस साल के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसको जब वहां की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी तो उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन की करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर अर्थव्यवस्था है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया के लिए तो है ही, क्योंकि रोमानिया तो अब पहले ही ये इसका सदस्य हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, हमने एक जो इतना महत्व यूरोप को नहीं दिया जाता था पहले जितना कि दिया जाना चाहिए था, और अब हम देख रहे हैं जो उसको महत्व दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, सभी के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।
1: और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है गॉर्डाना सेल्यानोस्का दावकोवा, उन्होंने अपना जो एड्रेस था, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हेरिटेज और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का बहुत ही संगम है, और उन्होंने भारत को 21st सेंचुरी की सक्सेस स्टोरी बताया। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है और कितना आपको स्कोप दिखाई देता है आपसी सहयोग का, जैसे आप कह रहे थे ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, जो भी इकोनॉमिक का कोऑपरेशन है उसमें कितना आपको स्कोप दिखाई देता है?
0: जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आपने कहा नॉर्थ मैसिडोनिया की जो राष्ट्रपति जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो हमारा तो अब पिछले 10-12 साल से हमारा जो फोकस रहा है सोनू जी, वो ये रहा है जो 3 T's जिसे कहा जाता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। टूरिज्म हो गया मतलब उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हो गए, लोग एक दूसरे के देश में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी, उनके संबंध और अच्छे होंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी, और इससे व्यापार को भी सहारा मिलेगा, व्यापार को भी नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलेगी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और पिछले अगर 5-6 साल में देखा जाए सोनू जी, पूरे विश्व में बहुत आपदाएं आई हैं, बहुत विपदा आई है। अगर आप कोविड-19 पेंडेमिक से देखें तो पूरे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई थी, बहुत असंतुलन हो गया था, असमानता आ गई थी, बहुत आर्थिक तरीके से बहुत देशों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। परंतु फिर भी भारत ने, चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वेपनाइजेशन सप्लाई चेन का रहा हो, सबके साथ जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे अच्छी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया, हम एनर्जी पर कितना बाहर से ऊर्जा लाने में, तेल गैस लाने में हम कितना डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 85-90% तेल हमारा बाहर से आता है, फिर भी हमने अपनी सारी जो हमारी जरूरतें थी उसे पूरा किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को कहीं चरमराने नहीं दिया। और यह बात अभी भी हुई जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए चाहे कितना उथल पुथल रहा हो पूरे विश्व में, और भारत के लिए भी ये जो हालात थे कुछ इतने सामान्य, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी भारत बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर करता रहा। और भारत ने ये कहा है जो जब हमारा विकास होगा तो हम सभी विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलेंगे
1: जी।
0: तो इसीलिए उनको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जो भारत के साथ अगर वो काम करेंगे, भारत के साथ अगर अपने संबंधों को आगे ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही विन विन सोल्यूशन होगा जिसमें उन देशों का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
1: इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अभी बायलैटरल ट्रेड 133 मिलियन डॉलर्स है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने संबोधन में कहा, और इसको दोगुना करना है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो फोकस एरियाज जो डिस्कस हुए, क्या लगता है आपको कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको लगता है कि आपसी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड है वो बढ़ सकता है?
0: देखिए, दो तीन चीजें मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक तो मैं समझता हूँ जो फार्मास्यूटिकल्स का एक एरिया है, क्योंकि हर देश को दवाइयां चाहिए। भारत चाहे, मैंने कोविड 19 का जिक्र किया तो उसमें हम पूरे विश्व की फार्मेसी तो बने हुए थे, पूरे विश्व की हम वैक्सीन कैपिटल भी बनकर उभरे उस समय। तो इसीलिए अब हमारे यहाँ से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हमें दवाइयां बहुत मात्रा में जाती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड वैल्यू लेकर इन दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दवाइयां वो जो आम मर्रा के जो लोग होते हैं उनके पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। तो भारत ने बहुत ही हाई क्वालिटी रीजनेबली प्राइज्ड जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं और बहुत ही मात्रा में हम बहुत देशों में इसका निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स तो मैं एक समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। दूसरा एग्रीकल्चर। हालांकि देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया एक पहाड़ी देश है, ज्यादा वहां पर जिसे कहा जाए एरेबल या कल्टिवेटेबल लैंड नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर एक जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
1: जी।
0: और तीसरा मैं समझता हूँ हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का जो हुआ, आजकल जो चल रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इसमें भारत नए कदम उठा रहा है, नई ऊंचाइयां पा रहा है। और जो ये देश है जहां पर कि ज्यादा एग्रीकल्चर को नहीं किया जा सकता और टेक्नोलॉजी में ये देश आना चाहते हैं, तो मेरे विचार से उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भारत योगदान कर पाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां और यहाँ पर मैं इसके आसपास के देशों में सोनू जी गया हूँ, मैं मोंटेनेग्रो में गया हूँ, क्रोएशिया में गया हूँ, और वहां का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
1: एक सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी बल दिया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का है, या हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, डिजास्टर रेजिस्टेंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको ज्वाइन करने की बात हमारी राष्ट्रपति ने कही और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आपको लगता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल अपनाता नजर आ रहा है?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहूंगा। एक तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पूरे पर्यावरण की संरक्षण करना, ये तो एक पूरे विश्व के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उभरा है।
1: जी, जी।
0: जो सभी देशों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमको ये पूरा विश्व रोहर में मिला है,
1: जी,
0: ये फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए इसके बारे में तो मिलकर बात करना, सहयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में उभरा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो COP21 जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, और अब उसमें करीब 100 से ज्यादा देश जुड़ गए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा जो नॉर्थ मैसिडोनिया या मोल्डोवा या रोमानिया, इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि देश आपको अफ्रीका में या एशिया में मिलते हैं, परंतु फिर भी ये वाली जो तकनीक है, ये वाली बहुत नई नई तकनीकें बनकर उभर रही हैं, और इसमें भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2015 के पेरिस अकॉर्ड में, हमने अपने समय आने से पहले ही हमने उनको पूरा कर लिया। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स थे, जो हमें 2030 तक प्राप्त करने थे, उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये ISA हुआ या फिर CDRI, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करने में दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। और अगर नॉर्थ मैसेडोनिया मल्डोवा इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: जो उन्होंने पीस की बात करी, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनमें रिफॉर्म्स की बात की, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट पहलू लगता है?
0: जी सोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि हमने देखा है एक तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरे विश्व में योगदान है वो एकदम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं सुनता है, क्योंकि देशों के पास वीटो पावर है। वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस के पास वीटो पावर है, यहाँ पर अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी नहीं सुनता है। और आजकल हम देख रहे हैं यूनिलैटरलिज्म का जमाना आ गया है, माइट इज राइट का जमाना आ गया है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कोई ध्यान नहीं करता है। तो उसके बारे में बातचीत करना, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इससे जैसे भारत ने हमेशा कहा है, जब तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक उसका सुधार नहीं होता, उसको आज की रियलिटी में नहीं लाती, क्योंकि वो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो तभी के जो हालात थे उसी के ऊपर वो निर्धारित है, परंतु आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। तो उसको जिसे कहते हैं मूविंग विद द टाइम्स, उसे करना चाहिए, वो अभी उसने नहीं किया है। और इसी के लिए अगर ये दोनों देश और उसके साथ साथ और भी देश साथ मिलकर आते हैं तो उससे पूरे दुनिया का इसमें कल्याण होने वाला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, आप हमारे साथ जुड़े। और पूर्वी यूरोपीय यात्रा जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, उसके अहम पहलुओं पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम सांझ ढले का यह है वक्त। सांझ ढलते ही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल लेकर आता है आपके लिए वो तमाम गीत जिनने आपकी जो शाम है वो खुशनुमा एहसास से भर जाती है।

0: 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से ये गीत आपने सुना। जॉय मुखर्जी और साधना अभिनीत ये फिल्म उस दौर की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

हेलन और दारा सिंह अभिनीत ये फिल्म थी 1967 में आई ठाकुर जनरल सिंह और ये खूबसूरत आवाज थी आशा ताई की।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कह दो जहां से कह दो। अप्रैल फूल 1964 में ये फिल्म आई थी और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का ये स्वर थे। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपसे रूबरू होता हूँ।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

मुकेश जी और लता जी की आवाज में ये गीत दुल्हा दुल्हन फिल्म से 1964 का ये फिल्म जिसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। प्रोग्राम यही संपन्न करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ और आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ

0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गाँव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गाँव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वामित्व योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अन्य कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 207 सीटें 5 नॉन टीचिंग अस्पतालों में आवंटित की गई हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक

0: रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए तीन स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें इसका विशेष ख्याल रखने संबंधी सलाह दी। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को जारी की थी। पदभार संभालने के बाद श्री ग्रेवाल ने मीडिया से कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग वास्तविक शिकायतों के समाधान और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ग्रेवाल ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
1: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की। अगर जुल्म होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अपने अपने फील्ड में सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे, अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डो के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक AC 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन

0: आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए।

0: उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्या पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने

विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है।
अभी आप संसद

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में चर्चा होगी FIH हॉकी विश्व कप, भारत जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच और कॉमनवेल्थ की तैयारियों की, और ये भी जाना जाएगा कि कैसा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहला दिन। लेकिन पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए हॉकी विश्व कप की तैयारियों के साथ, जहां हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया गया है। मोहित HS और सूरज करकेरा को गोलकीपर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि डिफेंस की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच के कंधों पर होगी। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी। साथ ही नीलाकांता शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और आदित्य अर्जुन लाला भी इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी। भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो टीम अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कड़ी में पहुंच चुकी है, और अब टीम के चयन पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं

0: भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी आरपी सिंह, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह आपसे हमारा यही है कि भारतीय टीम में इस बार अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए कि विश्व कप जैसे बड़े अवसर पर टीम में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है?
1: देखिए, ये 6 महीने से जो हमारी टीम प्रिपेयर्ड हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतियोगिताएं, टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, अभी आपने वर्ल्ड हॉकी लीग जितनी भी हो रही थी, तो उसी के ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप की और क्या कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा, नए भी हैं, पुराने भी हैं, पुराने क्या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज वाइज मैं बात नहीं करता, जो आज बेस्ट है उसकी बात करता हूँ। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो बेस्ट हमारे पास लॉट है या बेस्ट टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को मौका देने की कोशिश की गई है। और इन नए खिलाड़ियों की जो टीम में मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करती है कि भारतीय हॉकी में जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, वो काफ़ी मजबूत है। मैं ये जानना चाहूँगा आरपी सिंह जी आपसे कि इस पूरी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करने में नई उभरती हुई प्राइवेट लीग्स की कितनी भूमिका है?
1: देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग फिर शुरुआत हुई है, उसके पहले तो अब रेगुलर नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। बाकी जो हॉकी लीग है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले भी जो हमारी हॉकी लीग हुई थी उसी का नतीजा था कि हम लोग टोक्यो में मेडल लाए, फिर पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल लाए। एशिया में हमारी दोनों टीमें जा रही हैं, मेन वोमेन दोनों। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार वुमेन्स का भी हॉकी लीग हुआ था, मेंस का भी हुआ था। उससे जो नई उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, अपने सीनियर जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो अपने खेल को उनको भी देखते हैं, फिर अपनी कमियों को भी दूर करते हैं।
0: जी बिल्कुल, उनके लिए एक मौका होता है। आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की कि ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी, भारत ने आखिरी बार विश्व कप मेडल स्वर्ण पदक जो है 1975 में मलेशिया में जीता था, वो फाइनल मुकाबला जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था, अब 51 वर्षों का इंतजार हो चुका है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये टीम मेडल लेकर आती हुई नजर आ रही है?
1: देखिए, ओलंपिक में तो हम लगातार ले रहे हैं, ये विश्व कप हम लोग 75 में जीते थे, उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं, तो वो उसका एक मलाल है, क्योंकि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में, सब में मेडल दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में इधर नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारी टीम को क्वालिफाई करना, पहले अपना पूल क्वालिफाई करिए। वर्ल्ड कप जैसे प्रतियोगिता में सभी टीमें तैयार होके आती हैं, तो अभी पहला काम ये है कि हम सब टीमों को पहले पूल को जीतें। हर मैच हमारे लिए वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होगा और हमारी टीम को हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा, तभी हम मेडल की तरफ अग्रसर होंगे।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हर स्तर पर रणनीति होगी और मजबूत तैयारी ही आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय हॉकी कई वर्षों से इस टीम से लगा रहा है। और अब बात करते हैं स्क्वाश की। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनहस सिंह, शानवी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में आरवीर दीवान, युषा नसीफ और गुरवीर सिंह की टिकड़ी ने पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में जगह बना ली है। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया।
2: चीन के चांगझोउ में आज चीन ओपन का पहले दिन खेले गए मुकाबले में HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने 21-10, 21-14 से हरा दिया, जबकि देविका सिहाग को थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रूंगफान ने 21-19, 19-21, 21-13 से हराया। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के यूसी तनाका और आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अली फरहान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में जापान ओपन जीतकर आ रही PV सिंधु भारत की उन्नति हुड्डा के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन, हमसाक रूणन और MR अर्जुन की जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग का मुकाबला करेगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका गद्दे का मुकाबला चीन के फेन यांग जी और वांग डोंग पिंग से होगा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस

0: राष्ट्रों की जोड़ी चीन के ही गाओ जिंगवा तथा चेन फंगहुई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के कई अहम खिलाड़ी कल भारतीय चुनौती रखेंगे और सबसे अधिक नजरें होंगी भारत के लिए दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर, कि जिस तरह का शानदार जापान ओपन गुजरा है, क्या वो ये करिश्मा चीन ओपन में भी नशाती हुई नजर आएंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 23 जुलानी यानी बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। ये मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा।
2: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में युवा भारतीय T20 टीम एक और परीक्षा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद टीम की नजरें जिम्बाब्वे में खोया हुआ मनोबल हासिल करने पर होंगी। 3 मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और अंतिम मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी जिम्बाब्वे में खुद को साबित करने के इरादे से खेलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेट कीपर ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेटगे और रवि बिश्नोई भी भारतीय दल का हिस्सा है। इस श्रृंखला में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज PVS लक्ष्मण टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो टीम की कप्तानी सिकंदर रजा के पास है। टीम में ब्रायन बेनेट और डायोन मायर्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल रहेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे में 2024 में खेली गई पिछली श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एशियन गेम्स से पहले भारतीय इस युवा टीम के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। एक तो उस मनोबल को हासिल करना जो शायद इंग्लैंड दौरे में इस टीम ने कहीं ना कहीं खोया है, और दूसरा एक नई लय बनाना जिसके साथ हम एशियन गेम्स में इस टीम को उतरते हुए देखेंगे। हालांकि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है। तो देखना होगा ये टीम जिम्बाब्वे की धरती पर किस तरह का प्रदर्शन करती है। और इसके पहले जब ये दोनों टीमें जिम्बाब्वे में आमने सामने हुई थी तो भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। हालांकि जिम्बाब्वे अपने मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, एक अच्छी टीम है जिससे अच्छी फाइट की उम्मीद होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी एक इसको एक्सपोजर ट्रिप के तौर पर, एक एक्सपोजर टूर के तौर पर लेना चाहेंगे, जहां पे वो बेहद कई सारा अनुभव लेकर के जापान के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे, जहां ये टीम एशियन गेम्स के लिए जाएगी। और एशियन गेम्स का जिक्र हुआ है तो अब चर्चा की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की भी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, जहां खिलाड़ी 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में पदकों के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से तकरीबन 125-126 खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया है, जो 13 खेलों जिसमें पैरा कैटेगरी भी शामिल है उसमें पदकों के लिए मैदान पर उतरेगी। और इसमें स्टार जैवलिन थ्रोवर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जो एक शानदार वेटलिफ्टर हैं, और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। और खेलों के इस दल और इस पूरे आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो बात यह कि कितना बड़ा ये आयोजन होता है ये श्रोताओं को बताइए, और साथ ही कि भारत ने कितनी तैयारियां की हैं इस आयोजन को लेकर के।
3: जी शक्ति, इस आयोजन में 72 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी, जिसमें 56 जो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे, जबकि 16 दल जो है वो आश्रित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कई सारे खेलों को हटा दिया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन्स जैसे खेल शामिल हैं। और अगर हम बात करें 2022 कॉमनवेल्थ की तो भारत ने 61 मेडल जीते थे उसमें, और जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं उनमें भारत के 30 मेडल थे, तो यानी कि 47% जो मेडल थे वो खेल अब इस आयोजन से हटा दिए गए हैं।
1: जी बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे कि कितने खेलों को इस आयोजन में शामिल नहीं किया गया है, तो शायद हमारे सामने वो मेडल्स और उन खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ताज़ा हो रही थी जो इन खेलों में भारत के लिए अच्छी संख्या में बड़े नंबर्स में मेडल लेकर के आते थे। और 2022 का आपने जिक्र किया, उसके पहले 2018 की बात की जाए या फिर 2010 जो भारत का सबसे सफल कैंपेन था दिल्ली में, भारत ने किसको अंजाम दिया, ये खिलाड़ी इन इवेंट्स में इन खेलों में शानदार मेडल लाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब नजर ये होगी कि जो खेल हमारे सामने हैं उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं, तो किन खिलाड़ियों पे सबसे अधिक नजरें रहने वाली हैं भारतीय दल से?
3: देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं सर्वेश कुसारे जो है ऊंची कूद में, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में, तो और बॉक्सिंग में अगर बात करें तो जैस्मीन लंबारा, साक्षी चौधरी ये अपना दमखम दिखाएंगी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, वहीं तुलिका मान जूडो में, और पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सोमांक राणा शॉटपुट में और शर्मिला भी शॉटपुट में अपना दमखम दिखाएंगी।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए गुरविंदर सिंह पे भी नजर रहेंगी, स्टार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 6 महीनों में भारत में ट्रैक एंड स्पीड इवेंट्स की एक नई इबारत लिखी है। इस खिलाड़ी ने अपने पदक से, अपनी रफ्तार से 100 मीटर में वापस पदक के लिए उतरेंगे और उम्मीद होगी कि भारत इस तरह के स्प्रिंटिंग इवेंट्स में भी अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जैसे पोडियम फिनिश करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखेगा। और नीरज चोपड़ा का तो बिल्कुल जिक्र होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, जहां पे भी ये खिलाड़ी उतरता है, डायमंड लीग से लेके कोई भी आयोजन। इन खिलाड़ियों के साथ साथ और क्या खास भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है, अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो?
3: देखिए, भारत जो है वो इस टूर्नामेंट की जो है चौथी सबसे सफल टीम है, तो उसी की तरह से भारत को खेलना होगा, अपने जो कोर स्पोर्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और उम्मीद होगी कि इतने कम खेलों में भी किस तरह से वो 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ वाला प्रदर्शन दोहराया जाए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की, हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
6: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत

0: पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
5: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च

0: तरियाचांद से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे, मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित, मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
5: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
4: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the Union Minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked from his earlier stance and added more demands.
5: Then I told him, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. It's very unfortunate. The leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this. Particularly so when this morning itself, Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this.
4: Later, senior Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav and other opposition party members were detained by Delhi police during the protest near Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and the Rajya

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सके।
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहे, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो लोअर पॉल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
2: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, जिसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैव कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैव कीटनाशक या फिर आपके बायो

0: जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं। तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायोफ्यूल की भी आपने बात करी, बायोप्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
1: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जाम्पल बायोफ्यूल का बात कर ले, बायोगैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स। हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है। अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी। उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
0: जी, आपने जैसे औद्योगिकीकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायोप्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायोप्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
1: तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है। जिसमें आप मटेरियल्स की बात करें कौन सा मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में। तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक्स अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करें।
0: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
1: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन GDP में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ GDP बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन GDP का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन GDP को।
0: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी। और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेसिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
1: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी हैं और कोशिश किया जा रहा है कि प्राली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है या उससे

0: ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायोपेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में, बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
1: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खासतौर पे इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पे बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
0: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी, फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
1: जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं? इसे
0: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं, पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा में सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
4: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जावोंस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of the next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. Chief coach Craig Fulton is confident that the selected squad has a bright chance to win its own chapter in Indian hockey history. India, drawn in Pool D alongside England, Pakistan and Wales, will play all their pool stage matches in Amstelveen, Netherlands. India will begin their campaign against Wales on the 15th of August. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Prashant Kumar. मुख्य समाचार। स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने व्यापार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच प्रदान करेगा। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडनो में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दिखाती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 जारी किया गया था। श्री राय ने कहा कि ब्यूरो को मजबूत करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया। वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी

0: के हवाले से बताया कि हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र खोरमोज के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस क्षेत्र में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC नौसेना से जुड़े सैन्य ठिकाने स्थित हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कनाडा पर अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव जारी रखने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के अनुसार नए शुल्क 30 दिन में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से दोनों मित्र देशों के बीच व्यापार युद्ध गहराने की आशंका है। श्री ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा आने वाले हफ्तों में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता तेज करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में विनाशकारी बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हैं। तालिबान अधिकारियों के बयान के अनुसार बाढ़ के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नुकसान का आकलन करने, लापता लोगों की तलाश करने और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष बचाव दल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुवैत ने यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी अरब से संबंधित समुद्री नौवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई समुद्री मार्गों पर नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लाल सागर की सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया। साथ ही कुवैत ने सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाए गए उसके कदमों के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जाँच की मांग की थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और अवैध तथा जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने 3 बलूच नागरिकों के कथित अपहरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये घटनाएं एक गंभीर मानवाधिकार संकट को दर्शाती है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित HS और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, गुजराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी टीम का हिस्सा है। मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह और शिलानंद लाखड़ा को भी टीम में मौका मिला है। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स साथ पूल डी में है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने व्यापार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरुद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज।
3: द JAC लीडर्स स्लैम द पाकिस्तान।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। ख्वाब है आंखों में कुछ महके हुए से, आसमानों तक बना एक रास्ता है, बादलों के परों पर लिखे हैं बहारों के संदेशे, बरसात की रात है, छाई घटा है। वारिस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में।

कई बार घटाएं छा तो जाती हैं लेकिन बरसती नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में मौसमों का जो इम्तहान होता है उसका दौर कभी खत्म नहीं होता, मुसलसल जारी ही रहता है। और ऐसे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है मोहब्बत, और केवल मोहब्बत। वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कम से कम इम्तहानों के बाद उनका प्यार नसीब तो होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म मैंने प्यार किया की। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे लेकिन एक गाने की महक सीधे दिल में उतरती है। दरअसल इसमें भोजपुरी बोली की मिठास और शारदा सिन्हा की मखमली आवाज का संगम प्यार का वो अनूठा रूहानी सफर हमें मुकाम देता है, हमें वो सफर देता है और उस सफर पर ले जाता है जहां बस दिल यही कहता है। क्या कहता है सुनते हैं इस गीत में।

पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया। शारदा सिन्हा ने कमाल का भोजपुरी रंग इस गाने में घोला है। और वाकई साथियों, जिसे मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी सारी बलाएं ले लेने का मन करता है। जाने क्या शय है ये मोहब्बत, कोई रोग है, नशा है, बला है या कोई आदत। जिसे लग जाए ना, उससे फिर सारी बलाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आंखों में ख्वाब महकते हैं, धड़कनों पर सरगम मचलती है, और बिना घुंघरू के धड़कनों पर एक सरगम मचलती है, और फिर बिना घुंघरू के कदम खुद ब खुद थिरक उठते हैं। इस तरह सरगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

सरगम का गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म में जया प्रदा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो बोल और सुन नहीं सकती। एक गूंगी बहरी लड़की के दिल की दास्तां को जया प्रदा ने पर्दे पर जीवंत किया और बिना एक भी शब्द बोले सिने प्रेमियों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी। ये फिल्म उनकी सुपरहिट तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मोवा की हिंदी रीमेक रही और इसी के जरिए जया प्रदा ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और बिना एक भी डायलॉग बोले अपनी खूबसूरत अदाकारी और बेहद खूबसूरत डांस के जरिए सभी का दिल

0: बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। अमोरे मियो डोई से तो टी आई स्टो सरकेंडो टाई सोरो मियो, ये इटालियन भाषा की लाइन है। इसका मतलब है मेरे प्यार तुम कहाँ हो, मेरे खजाने मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान इटली के वेनिस ग्रैंड कैनाल में एक शानदार गोंडोला पर सवार हैं। गोंडोला वेनिस की लंबी सकरी सुंदर लकड़ी की एक शानदार नाव होती है जो वहाँ के कैनाल में चलाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे चलाने वाले नाविक को गोंडोलियर कहा जाता है। गोंडोला वेनिस शहर की पहचान मानी जाती है। ये गीत वहीं पर फिल्माया गया है। गीत में जो गोंडोलियर है वो ये लाइन गा रहा है और गीत के बीच में वो एक और जगह गाता है, अमोरे मियो इल टेम्पो वोला प्रेंडिलो प्रेंडिलो अमोरे मियो। इसका मतलब है मेरे प्रिय समय उड़ जाता है, इसे पकड़ लो मेरे प्रिय। कितनी प्यारी सीख छिपी है ना इस गीत में। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और इटालियन भाषा में शरद कुमार ने। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। सुनते हैं गीत।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के

0: वजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे। पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। हालांकि ऐसी एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470। Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session today. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index rose 0.3% and small-cap 100 index added over 0.5%.
1: हालांकि सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज मजबूती दर्ज हुई। बढ़त वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 2%, इंडिगो 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% प्रमुख रहे। गिरावट वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.1%, रिलायंस तथा स्टेट बैंक लगभग 1.5% और टीसीएस 1.3% के नुकसान से बंद हुए।
0: In the sectoral indices on the BSE, 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Realty rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined, and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
2: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and there is a, this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive, and that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the, perhaps in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch, as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in, so far so good, but nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up, and that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp, and the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable, sentiment which is there in the market, but the market is yet to try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter, that's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
1: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग बराबर से ही रहे। और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोज। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
2: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिसपे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ही हम मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
2: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है, जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा। आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
2: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नज़र जरूर है, और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएँ, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पे स्थिर हैं, और अब वो कहाँ मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
2: देखिए क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा, और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा, और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई, एशियाई बाजारों में लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्था ही मान चुकी है कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार

0: प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है।
1: देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना और ख़ासतौर पर ऐसी स्थिति पर पहुँच जाना जहाँ पर कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
2: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
1: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any, unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some, negative impact on the market, specifically, in US, in Canada and in European markets as well. But it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
0: मैं फिर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। इस कॉपीएम में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं, साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य संस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तरी मकदूनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच भी प्रदान करेगा।
2: बैंक्स हैव मोबिलाइज्ड ओवर 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्पेशल स्वैप स्कीम टिल फ्राइडे लास्ट वीक। The scheme was operationalized on 8th of June. According to RBI's data issued yesterday, of the total deposits, banks received 17.4 billion US dollars through foreign currency non-resident FCNR bank deposits. Nearly 2 billion USD were raised through overseas foreign currency borrowings or OFCBs, and over 1.3 USD through external commercial borrowings. RBI had announced this conceptual swap facility with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. The swap facility for FCNRB deposits will remain available until 30th of September 2026. Vishal, can this rise in FCNR deposits be seen as a sign of growing global confidence in India's economic stability?
1: That is one way of looking at it. The other way of looking at it is that the RBI has given the opportunity or the option to non-resident Indians, NRIs or OCI card holders and all these people, those who have gone abroad to various countries, made their mark, have been earning a significant amount of money, to go ahead and park their money, or rather invest their money, within the country, that is India, with very, very significant options provided in the FCNRB. Because largely, if you look at FCNRB, it's more of a fixed deposit for the NRIs. Now, that's a very interesting aspect. It's like this, that say, for example, I'm settled in United States or some other country. I've earned, say, $1 lakh. That is my earning. Now, there are currency fluctuations as well. So what RBI says is, it gives me an option through this particular scheme that I can go ahead and invest or park my money in Indian banks for a specific tenure, maybe 1 year, maybe 2 years, and the maximum is 5 years. Now, what do I get out of it? My money will be parked in US dollars if I have earned it in US dollars. If I've earned it in, pound sterling, it'll be parked in pound sterling. So there is no change of currency. So basically, I then save money on exchange rates as well. That is one. Two, when I want to, get my money back, I'll get the principal and the interest as well to my overseas account. I can get back the entire 100% of that money. There is no tax as well on this. That is one. There's one condition, though, which RBI has imposed, and that condition is really insignificant and important from both point of view. That is that you cannot withdraw before 1 year. There is a period, holding period, that is minimum is one year. Now, what do we get out of it? What do RBI gets out of it? We get foreign currency. Then there is a swap facility, which banks can utilize. The other banks can utilize. They can, park their dollars with the RBI, get rupee in that. So RBI is Reserve Bank of India gets a lot of maneuvering and elbow room as far as currency fluctuations are concerned. Our foreign currency target is achieved. The coffers are much more bigger, and as far as investors are concerned, it's a win-win situation for them, so that their money is safe in their country of their origin. That's one. And they can get it back as and when they want it, without any tax.
2: All right, perfect. Global crude oil prices gained today. Brent crude was trading over 1.7% up at $90.76 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading nearly 1.7% up at $83.87 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
0: Multi-commodity exchange में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.9% की बढ़त से 1,42,608 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2.1% की मजबूती से 2,23,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. विशाल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ये अभी आपके हिसाब से ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहां देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसे देखा था डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है। पहले तेल फिर सोना।
1: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं। तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो

0: चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है।
1: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा,
0: मैं ये नहीं कह सकता नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए। और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना। लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर।
1: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में है, ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
0: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी हैं और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा।
1: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: Benchmark domestic indices fall, Sensex drops nearly 250 points, Nifty settles at 24,188. Most Asian stock market indices end in positive territory and global crude oil prices rise. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन में था आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत लिया है हमने फिल्म साजन से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी

0: विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब जहाँ किसी की एक झलक दिल की धड़कनों को बदल कर रखते और फिर हर बार उसी की आहट उसी का ख्याल हमारे इर्द गिर्द ठहर जाए और दिल बस एक ही ख्वाहिश करे कि काश वो सामने हो और ये वक्त यहीं थम जाए। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है या रब वो उधर पैदा कर। काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था। तो क्या हुआ? वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था तो क्या हुआ? मैंने चांद देखा है किसी शाख गुल पे झुका हुआ। जी हाँ, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बदलते मौसम, बदलते दौर और बदलती राहों के बीच भी दिलों का रिश्ता अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। मोहब्बत की यही तो सादगी है और यही गहराई जो हर दौर में नई लगती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी मौजूदगी ही हर खुशी की वजह बन जाए और जिंदगी का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता हुआ महसूस हो, जी हाँ यही तो है प्यार। ये प्यार का वही खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को अनमोल बना देता है। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अब कोई आरजू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो।

कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की हर बात कह जाती हैं, और एक मुस्कान अनकहे जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं निशिगंधा। जिंदगी हर किसी को हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा नहीं देती, लेकिन कभी कभी कुछ किस्मत वालों को कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो बरसों के इंतजार के बाद मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो उसकी मुलाकात, एक मुलाकात भी पूरी जिंदगी को संवार देती है, खूबसूरत बना देती है।

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। हंसो।

आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।

देखिए चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ ही आ चुके हैं और चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे आपको, एक और खूबसूरत सा गीत। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, गजल के रेशमी धागों में।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी

0: चलते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। गीत सुहाने लेकर मैं सुरभि आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और खूबसूरत लम्हों का भी साथी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही सुरीले और

नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते। सर रखते हैं सर में नहीं सौदाए मोहब्बत, दिल रखते हैं दिल में कोई अरमा नहीं रखते। हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा। शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, खाक में मिलकर तो हासिल मुअद्दा हो जाएगा। तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा, जा।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए गीत सुहाने में अब आपको सुनवाते हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठ हो बहुतों से सुनी है। गजलों ने वहीं जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है बहुत धूप कड़ी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।
1: यूं ही तुम मुझसे

भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for a coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak.

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि वो गजल बालों का उसलूप समझते हों।

होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की जबां खुशबू है, फूल से लोग इसे खूब समझते होंगे। भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

प्यार भरी नजर का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अपनी धड़कनों का हिसाब ही भूल जाता है। एक मुस्कान मासूम सी, एक चुपके से उठी नजर और अनकहे एहसास, यही तो मोहब्बत की है सबसे हसीन जबान। और इसी दिलकश अदा और प्यार की मीठी कशिश से सजा है अगला गीत।

धीरे धीरे वक्त हमें अंजाम की तरफ ले आया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हां, जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो हर गली रोशन लगने लगती है और हर शाम चांदनी से भर जाती है। किसी अपने की एक झलक, उसकी एक मुस्कान और एक मुलाकात का इंतजार, यही प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में। तुम छत पे नहीं आए वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत लटका सावन की घटाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों की बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

इसी गीत के साथ राज सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 18 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी सीधा साधा तो रहा ही नहीं, इसमें थोड़ी शरारत होती है, थोड़ा अलबेलापन और थोड़ा सा सुरूर। जब दो दिल इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो राह का हर मोड़ हसीन लगने लगता है। मोहब्बत का ये सफर जितना अनूठा है उतना ही अलबेला भी है। आइए लिए चलते हैं आपको बीते हुए सुनहरे दौर में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं झुकता, ना तो वह झुकता है और ना ही किसी को झुकाता है, बल्कि वह सर उठाकर हर तूफान का

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार की डोरी जब दो दिलों के बीच में बंध जाती है, फिर ना जमाने की कोई बंदिश ना किसी का डर, फिर तो ये खूबसूरत प्रेम खामोशी में भी कितना कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से।

अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। तेरी यादों के चिरागों से पलकों की शामें जलती हैं। सोचती हूँ सो जाऊं किसी ख्वाब में जाकर, पर ख्वाबों में भी तेरी ही आहटें चलती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गीता रॉय की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई से।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, यादों के सहारे ही सही हमेशा दिल में रहोगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पारस मणि से ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। ना बंधन है ना फेरे हैं, ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप हमारे लिए बने हैं और हम आपके लिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इंतकाम।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब हमराही कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को इस प्यारे से मौसम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि उसका परिणाम अच्छा हो, पर मन में अलग अलग विचार भी आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पर फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण तो जल ही जाती है। और दोस्तों, ज्यादा सोचना भी कभी कभी हमारी परेशानी का सबब बन जाता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा यही सोचकर आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आशा से ये गीत।

दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना है और बाहर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। जिंदगी के कुछ पल इस प्यारे से मौसम के साथ बिताइए और साथ में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, यानी फूल और कांटे दोनों ही होंगे, और अगर आपने दोनों के संग रहना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप ही महक उठेगी।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अनोखी रात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल से।

उलझनों से भरी इस जिंदगी को, उलझनों से भरी इस जिंदगी को जरा बेफिक्री से जीना सीखो। आसमां तो वही है साहेब, बस तुम थोड़ा खुलकर उड़ना सीखो। आइए सुनते हैं नर्थ की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म नया दौर से अभी आपने गीत सुना। छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, जब भी मिले फुर्सत के पल प्यार का जहां बसाने चले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही जिया जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ये अभी आपने गीत सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों, इस दुनिया में हम आए हैं तो सभी तरह से दुनियादारी भी निभानी ही पड़ेगी, चाहे है तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुनियादारी से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपजे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपजे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने और शांतिमय माहौल में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।

दोस्तों, हंसी जिसका सुख केवल इंसान को ही मिला है, और जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर की सारी नसें, जो भी ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से ही हंसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़े हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बस दिल में जोश और जुनून कायम रखिए, फिर देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनोखा दान से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना ससेवा। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म आजाद से।

दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर एक नई चुनौती है। कभी अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है तो कभी कुछ बुरा। पर कुछ भी हो दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल इस गीत की तरह जो लिया है फिल्म मेरी जंग से, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।